FM बैंड 101.1 MHz अति प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। अज दिन सोमवार शक सम्मत 1948 दी भादो महीने दी 23 तरीक ते ईस्वी सन 2026 दी सितंबर महीने दी 14 तरीक है। स्टूडियो दी घड़ी ते समा 5:58 ते 40 सेकेंड। हुण साडी अज दी प्रसारण सभा शुरू हुंदी है। साडी अज दी प्रसारण सभा दे विच सारे ही स्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत है।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: अगला शब्द सर्वन कर दिया भाई कमलजीत सिंह रागी पासों गायन किया हुआ।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: सर्वन करदे हैं भक्ति रच

नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। नई उम्मीदों, नई ऊर्जा, नई रोशनी के साथ प्रोग्राम सजरी सवेर और मैं आपकी रेडियो दोस्त ममता अरोड़ा। आज की ये सुबह कुछ खास है क्योंकि आज है 14 सितंबर हिंदी दिवस, वह दिन जो हमें अपनी प्यारी हिंदी भाषा के गौरव, मिठास और समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारे भावों की अभिव्यक्ति है, हमारी संस्कृति की पहचान है और दिलों को जोड़ने वाली एक खूबसूरत कड़ी। तो आइए आज की इस सुहानी सुबह की शुरुआत करें हिंदी के सम्मान के साथ, कुछ खूबसूरत शब्दों के साथ और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ।

आइए हम सब मिलकर सुबह को बनाते हैं और भी खुशनुमा, क्योंकि सुबह नई है, एहसास नए हैं और बात अपनी हिंदी की है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम सजरी सवेर।

कहते हैं ना, रिश्ते बड़े बड़े तोहफों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों, प्यार भरे शब्दों और एक दूसरे के लिए निकाले गए समय से मजबूत होते हैं। तो आइए आज की इस खूबसूरत सुबह एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। अपने किसी अपने से दिल की बात कहेंगे, किसी रूठे हुए को मना लेंगे, किसी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे और अपनों को ये एहसास जरूर दिलाएंगे कि वह हमारे लिए कितने खास हैं।

क्योंकि जिंदगी की बाग दौड़ में हम बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खुशी तो हमें तब मिलती है जब हमारे पास उस खुशी को बांटने वाले हमारे अपने लोग होते हैं। इसलिए मुस्कुराइए, अपनों का हाथ थामिए और इस नई सुबह को प्यार, अपनापन और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ाइए। आपके साथ, आपकी बातों के साथ और आपके अपने पन के साथ।

जिस तरह की तुहानू भी पता है ते प्रोग्राम दी शुरुआत भी मैं हिंदी विच कीती तां श्रोतियो 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस इस दिन भारत दी संविधान सभा ने देवनागरी लिपि विच हिंदी नूं संघ दी सरकारी भाषा वजों अपनाया सी। 1953 तो हर साल 14 सितंबर नूं हिंदी दिवस वजों मनाया जांदा है। 14 सितंबर 1997 एक बेहद दुखदाई खबर अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस दी याद आज भी दिला नूं झंझोर देंदी है। 14 सितंबर 1997 नूं मध्य प्रदेश दे बिलासपुर जिले विच अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस दे कई डब्बे नदी विच डिग पए। इस हादसे विच 81 लोकां दी मौत हुई सी। 14 सितंबर 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी दा अमेरिका कांग्रेस नूं संबोधन। भारत दे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका दी कांग्रेस दे सांझे इजलास नूं संबोधन कीता। 14 सितंबर 1867 दास कैपिटल दा प्रकाशन। जर्मन दार्शनिक अते अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स दी मशहूर किताब दास कैपिटल दा पहला खंड 1867 विच प्रकाशित होया। 14 सितंबर 1956 IBM ने RAMSC रामैक 305 कंप्यूटर पेश कीता जिस विच दुनिया दी पहली व्यापारक हार्ड डिस्क ड्राइव दी वरतों कीती गई। 14 सितंबर 1960 OPEC दी स्थापना। जी 14 सितंबर 1960 नू बगदाद विच OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दी स्थापना हुई। इस दे संस्थापक मेंबरां विच ईरान इराक कुवैत सऊदी अरब शामिल सन। 14 सितंबर 1752 ब्रिटेन वालों ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। आओ गल करदे हां 14 सितंबर नूं जन्मे कुछ महान शख्सियतां दी। मशहूर फिल्म निर्माता ते निर्देशक GP सिप्पी जिन्हां दा जन्म 14 सितंबर 1914 नूं होया, उन्हां ने शोले और सीता और गीता वर्गियां हिट फिल्मां साडी झोली पाईआं। प्रसिद्ध वकील अते भारत दे साबका केंद्री कानून मंत्री राम जेठमलानी 14 सितंबर 1923 नूं उन्हां दा जन्म होया। 14 सितंबर 1769 अलेक्जेंडर वॉन हम्बलोट जर्मन भूगोल विज्ञानी खोजी अते कुदरत विज्ञानी अलेक्जेंडर अपना जन्मदिन मनांदे ने। इस दे नाल ही 14 सितंबर 1879 मार्गरेट सेंगर अमरीकी नर्स अते जन्म नियंत्रण अधिकारां दी कारकुन अपना जन्मदिन मनांदे ने। 14 सितंबर नूं जन्म होया लॉरेंस क्लाइन नोबल इनाम जेतु अते अर्थशास्त्री 14 सितंबर 1920 नूं जन्मे। 14 सितंबर 1947 नूं जन्म होया प्रसिद्ध अदाकार सैम नील। 14 सितंबर 1965 रूस दे साबका राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव अपना जन्मदिन मनांदे ने। 1973 14 सितंबर नूं प्रसिद्ध अमरीकी रैपर नास अपना जन्मदिन मनांदे ने। इसे दिन जन्म होया सन 1983 विच एमी वाइनहाउस अमरीकी ब्रिटिश गायिका अते गीतकार दा। 14 सितंबर 1992 जन्म होया जीको दक्षिणी कोरियाई गायक अते रैपर। आओ गल करदे हां उन्हां महान शख्सियतां दी जिन्हां ने 14 सितंबर नूं इस फानी संसार नूं अलविदा कहा। 14 सितंबर 1836 एरन बर अमरीका दे तीजे उपराष्ट्रपति 14 सितंबर 1852 ड्यूक ऑफ वेलिंगटन प्रसिद्ध ब्रिटिश सैनिक कमांडर अते प्रधानमंत्री 14 सितंबर 1901 विलियम मैकनले अमरीका दे 25वें राष्ट्रपति 14 सितंबर 1927 ईसाडोरा डंकन आधुनिक

रात दे आसमान विच दिखाई देन वाले तारे सानू हमेशा तो आकर्षित कर दे आए ने। असी तो सिर्फ एही सुनिया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, पर सवाल ए है असी तारिया बारे जानदे किवें हां, उना दा तापमान किन्ना है, ओ किस हालात विच ने, उना तो निकलन वाली रोशनी सानू की दस दी है। इना सवाला नू समझन लई भारतीय विज्ञानी मेघनाथ साहा जी दा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उना ने एक अजिहा समीकरण विकसित कीता जिस नू साहा आयोनाइजेशन समीकरण कहा जांदा है। इस दी वरतो तारिया दे महत्वपूर्ण अते उना दे स्पेक्ट्रम नू समझन लई कीती जांदी है। अर्थात जिस आसमान नू असी सिर्फ खूबसूरत समझ के देखदे हां, विज्ञानी उस आसमान दी रोशनी नू पढ़ के उस दे अंदर लुकी जानकारी समझन दी कोशिश करदे ने। एही ता विज्ञान दी खूबसूरती है, जेड़ी चीज सानू सिर्फ रोशनी विखाउंदी है, विज्ञानी उस विच एक पूरी कहानी पढ़ लैंदे ने।

आओ हुन गल करदे हां उस विज्ञानी दी जिन्ना ने भारत दे परमाणु विज्ञान दे विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओ सन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत नू विज्ञान अते टेक्नोलॉजी दे खेतर विच आत्म निर्भर बनाउन दी दिशा विच इन्हां ने महत्वपूर्ण संस्थागत काम किया। उन्हां ने भारत दे परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम दी नींह रखन विच प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हां दा मनना सी कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालावां तक सीमित नहीं रहना चाहिदा, विज्ञान दी वरतों देश दे विकास लई होनी चाहिदी है। उन्हां दे यतना नाल भारत विच परमाणु विज्ञान दे खेतर विच एक मजबूत आधार तैयार होया। अज जदो असी परमाणु ऊर्जा ते परमाणु खोज दी गल करदे हां तां डॉक्टर होमी जहांगीर जी दा योगदान नूं वी याद कीता जांदा है।

हुन जरा अपनी नजर धरती तो उपर चुक के आसमान वाल करो। आज भारत पुलाड़ दे खेतर विच दुनिया दे प्रमुख देशां विच अपनी थां बना चुका है, पर इस यात्रा दी शुरुआत करन वालियां विच एक महत्वपूर्ण नाम सी डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्हां नूं अक्सर भारतीय पुलाड़ प्रोग्राम दा पितामा कहा जांदा है। उन्हां दी सोच बहुत स्पष्ट सी। ओ चाहुंदे सन भारतीय पुलाड़ टेक्नोलॉजी दी वरतों सिर्फ अपनी ताकत दिखाउण लई नहीं, सगों आम लोकां दी जिंदगी बेहतर बनाउण लई करे। मौसम दी जानकारी होवे, दूर दराडे दे इलाकियां तक संचार पहुंचाना होवे, खेतीबाड़ी नाल जुड़ी जानकारी या कुदरती आफता ते नजर रखनी होवे, पुलाड़ टेक्नोलॉजी दी वरतों समाज दी भलाई लई कीती जा सकदी है। अज असी देखदे हां भारत दे उपग्रह मौसम दी भविखवाणी, संचार, नेविगेशन, खेतीबाड़ी अते आफत प्रबंधन वर्गे कई खेतरां विच लाभदायक ने। इस सोच दे पिछे साराभाई वर्गे विज्ञानियां दी दूरदर्शिता सी।

साडी विज्ञानिक यात्रा श्रोतियो जी खत्म नहीं हुंदी। अज भारत दे विज्ञान अते टेक्नोलॉजी दे कई नवे खेतर तेजी नाल अगे वध रहे ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, रोबोटिक, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अते सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी, ए सारे खेतर आउन वाले समय विच साडी जिंदगी नू वड्डे पद्धर ते बदल सकदे ने। अज दे नौजवान विज्ञानी अते खोजकर्ता इन्हां खेतरां विच काम कर रहे ने। भारत दे पुलाड मिशनां ने दुनिया दा अध्ययन अपने वल खिंचिया है। नवी पीढ़ी दे विज्ञानी सेहत, खेतीबाड़ी, वातावरणी तब्दीली अते ऊर्जा वर्गियां समस्यावां दे हल लब्भन विच जुटे होए ने। इसलिए विज्ञान दी कहानी सिर्फ अतीत दी कहानी नहीं, ए साडे भविख दी कहानी भी है।

0: विज्ञान दी शुरुआत अक्सर एक छोटे जे सवाल तो हुंदी है।
1: क्यों चलती है पवन?
0: क्यों? इस तो बाद आंदा है दूजा सवाल, इस नु किवें होर बेहतर बनाया जा सकदा है।
1: क्यों झूमे है गगन?
0: एही सवाल ता विज्ञानिक सोच नु जन्म देंदे ने।
1: क्यों मचलता है मन?
0: श्रोतियो, अज असी भारत दे कुछ महान विज्ञानियां दी यात्रा कीती, पर एक गल सारियां विच सांझी, जिज्ञासा, सवाल पुछण दी हिम्मत, सिखण दी इच्छा अते असंभव लगण वाली चीज नू संभव बनाउण दी कोशिश।
1: ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम।
0: इसलिए अगली बार जदों तुसी आसमान विच कोई उपग्रह वेखो, मोबाइल फोन दी वरतों करो, खेत विच नवी टेक्नोलॉजी वेखो, ते किसे विज्ञानिक खोज बारे सुनो, ता याद रखो, विज्ञान सिर्फ विज्ञानियां दी दुनिया नहीं है, विज्ञान साड़ी सारिया दी जिंदगी दा हिस्सा है। ते शायद आज विज्ञान दी एक कहानी सुन रहा है कोई बच्चा, कल भारत दा अगला महान विज्ञानी बने। इसे उम्मीद अते इसे विश्वास नाल मैं तुहाडे तो विदा लैनी हां, तुहाडी मेजबान ममता अरोड़ा।

फिर मिलांगे विज्ञान दी एक होर रोचक कहानी दे नाल। ओदो तक सवाल पुछदे रहो, सिखदे रहो अते विज्ञानक सोच नू अपनी जिंदगी दा हिस्सा बनाओ। धन्यवाद कर दी अपनी टेक्निकल टीम दा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा।

0: हाँ जी।
1: केवाईसी अपडेट ले मेनू वार वार मैसेज क्यों आ रहा है?
0: क्योंकि बैंकिंग सेवा वाले निर्धारित समय ते केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर होवेगा कि मैं
0: जेकर पछाण जा पते विच कोई बदलाव नहीं है ता अपने बैंक जा एटीएम जा बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी कोल जाके जा बैंक नाल रजिस्टर्ड ईमेल जा मोबाइल नंबर राही जा मोबाइल बैंकिंग ऐप राही जा पत्र राही उसकी डिक्लेरेशन दियो।
1: अच्छा, ते जेकर कोई बदलाव होंदा है ता
0: फिर पछाण अते पते दा नवीनतम सबूत दे के केवाईसी अपडेट करवा सकदे हो।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट करवाउण लई अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप जा बैंक शाखा ते जाओ।
2: आरबीआई कहिंदा है,
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
6: प्रोग्राम संबंधी सूचना 14 सितंबर दिन सोमवार प्रोग्राम कर परिवार के तहत सिलसिला सेहत संभाल विषय रहेगा छाती अते साह दियां बीमारियां। इस महत्वपूर्ण विषय ते जानकारी देन लई साडे स्टूडियो विच हाजिर होंगे डॉक्टर आंचल जैन जिन्हां नाल गलबात करनगे आकांक्षा अरोड़ा। जिन्हां श्रोतियां ने इस विषय संबंधी कोई सवाल पूछना होवे जां जानकारी लेनी होवे ओ साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते कॉल कर सकते ने। इस प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन बड़ियाल अस्पताल बठिंडा। सो सुनना ना भूलना 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 12:30 सिलसिला सेहत संभाल। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की

0: सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को

0: संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देशभर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत एमटीएल गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरु मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
4: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
5: लखनऊ के

0: झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कैनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA government

सुनते हाँ प्रोग्राम का अगला गीत। एमी विर्क की आवाज विच फिल्म निक्का जैलदार तीन विचों गीतकार कप्तान अते संगीतकार ने रिक एच आर टी।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में आप सुन रहे थे जुनैद वसी का लिखा ये गीत। चिरंतन भट्ट ने संगीत से सजाया था जॉली एलबी टू फिल्म के इस गीत को। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, बस अभी हाजिर होते हैं।

0: चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे कि उत्सव में खास तौर से मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, ढेर सारी तैयारियां होती हैं और किसी किसी के घर भी जाना होता है, सबसे मिलना होता है, लेकिन माहौल जो भी हो सबसे जरूरी है अपने मन का ख्याल रखना, क्योंकि अगर आपका मन खुश है, हल्का है, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है।
3: One more time.

विशाल मलिक होलगड़ी की आवाज में आप सुन रहे थे तुम्हारी सुलू फिल्म का ये गीत, वायु ने इसे लिखा, तनिष्क बागची का संगीत। और हम बात कर रहे थे कि मन जो है इसी तरह से हल्का होकर उड़ना चाहता है, बहुत सारी चीजों को महसूस करना चाहता है। तो अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो उसे बांध कर दिल से ना लगा कर बैठ जाएं, क्योंकि इससे तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं किसी दोस्त से आप ये बात साझा कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा आपको जिनसे आप वो बातें कर सकते हैं तो अपनी डायरी में लिख सकते हैं, किसी पेज पर लिख कर फाड़ कर फेंक सकते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी मन से वो बातें आप निकालेंगे उतना ही जल्दी आपका मन हल्का होगा और आपको जीवन में आनंद आने लगेगा।

सनम रे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शान की आवाज, मनोज मुंतशिर के बोल और जीत गांगुली का संगीत। कुछ इस तरह से छोटे छोटे तमाशे हमारा मन भी करता है, लेकिन मन का माहौल बदलने का ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि गणेश पूजा शुरू हो गई और खास बात इसकी ये है कि आपको झूमने नाचने गाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है और इससे मन बड़ा खुश रहता है।

ट्यूबलाइट फिल्म का ये गीत आपने सुना कमाल खान, देवनेगी, नक्श अजीज और तुषार जोशी की आवाज थी। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत। और जब हम बात कर रहे हैं मन को हल्का रखने की और अपने जीवन को अच्छा करने की, तो एक सबसे गहन सूत्र है जो हम आपको बता रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ही खुद की आलोचना करते हैं और लगातार करते हैं, लेकिन अगर इससे हमारे अंदर कोई बदलाव हम नहीं ला रहे हैं, सिर्फ अपनी आलोचना कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय अपनी जो भी कमियां हैं उन्हें जरूर देखिए, लेकिन लगातार उसके बारे में मत बोलिए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि मन इस बात को गांठ बांधता रहता है और उसे लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं। तो इस तरह से अपने मन को आप ट्रेंड मत कीजिए, बल्कि खुद को इस तरह से तराशिए कि आपके अंदर की कमियां जरूर दूर हों, लेकिन आपका मन ये ना सोचे कि सिर्फ कमियां ही कमियां आपके अंदर है। तो अपने मन को स्वस्थ रखने और खुश रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। फिर देखिए कैसा आपका मन कहता है कि आपका वो फैन हो गया।

नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म से गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और इसके साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे सरदार? दो आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
2: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर?
3: हाँ?
1: कितनी गोली है?
3: 6 सरदार,
1: 6। 6 गोली है इसके अंदर।

0: छह गोली और आदमी थी, बहुत बेइंसाफी है ये। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमा ही दिए। अब कहां गोली है कहां नहीं हमको नहीं पता,
1: हमको कुछ नहीं पता।
0: इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला।

0: तेरा क्या होगा कालिया? अरे
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया।

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पसोपेश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर, जिनका नाम है GP सिपी।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

0: अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे ला ला ला ला ला ला
1: जीपी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन। इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई, 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।
1: चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी।

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शोले, और शोले के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई।

सन 1992 में आई राजू बन गए जेंटलमैन, यहां से शाहरुख खान की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपीसीपी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपीसीपी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपीसीपी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

0: इसके बाद आई आतिश, सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।
1: तेरी बातों की शराब, तेरे पापों के हिसाब, तेरे स्विस बैंक अकाउंट, गोल गोल मॉल काउंट, तेरे गली गली यार, पूरी गोली बार बार, पहले यारी में मिली फिर बिकी बार बार, तेरी होगी सरकार, तेरा होगा दरबार, पर रहेगी नहीं कमजोरी हर बार, जाएंगे जाएंगे जाएंगे बारी बारी,
2: आपकी सेवा में जनहित में जा रही।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
3: आज के फनकार।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोतियो हुण तुसीं सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते स्टूडियो दी घड़ी ते सवेर दे 10:25 हो चुके हन। हुण वेला है सदाबहार फिल्मी पंजाबी फिल्मी गीतां ते आधारित प्रोग्राम गीत पिटारा दा। नमस्कार श्रोतियो, अज दा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ मैं अमृतपाल सिंह। श्रोतियो सुनदे हाँ प्रोग्राम दा पहला गीत फिल्म भंगड़ा विच्चों। मुहम्मद रफी दी आवाज़ विच गीतकार वर्मा मलिक अते संगीतकार ने हंसराज बहल।

फिर दीदी मर जावे।

Tu gritan con él.

विघनहर्ता मंगलकर्ता बुद्धि ते ज्ञान दे देवता श्री गणेश जी। आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे श्रोतियो, गणेश चतुर्थी दे पावन मौके ते मिति 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 1:15 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दी विशेष पेशकश।

परंपरा अते भक्ति नाल रंग्या एक खास प्रोग्राम ता फिर सुनना ना भूलना। मिति 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 1:15 बजे आकाशवाणी बठिंडा दी ए विशेष पेशकश। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सतपाल बराड़।

0: प्रोग्राम संबंधी सूचना 14 सितंबर दिन सोमवार प्रोग्राम कर परिवार के तहत सिलसिला सेहत संभाल विषय रहेगा छाती अते साह दियां बीमारियां। इस महत्वपूर्ण विषय ते जानकारी देने लई साडे स्टूडियो विच हाजिर होंगे डॉक्टर आंचल जैन जिन्हां नाल गलबात करनगे आकांक्षा अरोड़ा। जिन्हां श्रोतियां ने इस विषय संबंधी कोई सवाल पूछना होवे जां जानकारी लेनी होवे वो साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते कॉल कर सकते ने। इस प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन बड़ियाल अस्पताल बठिंडा। सो सुनना ना भूलना 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 12:30 ते सिलसिला सेहत संभाल प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा।
1: मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। जी हाँ, अपनी आवाज जरिए विश्व प्रसिद्धि हासिल करने वाली आशा भोसले ते जसपाल सिंह दी आवाज़ां विच सुनदे हाँ ये गीत फिल्म नचदी जवानी। गीतकार रजिंदर कृष्ण ते संगीतबद्ध कीता है जी सपन जगमोहन होरां ने।

0: छोटा परवार हुंदा सुखी परवार।
1: विरसा जो साड़ी पहचान है, सभ्याचार जो साड़ी शान है, अते रीति रिवाज जो सानू अपनियां जड़ां नाल जोड़दे ने। जी श्रोतियो, मिति 14 सितंबर दिन सोमवार शाम 5 बजे प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार दे तहत तुसी सुनोगे पंजाबी सभ्याचार अते रीति रिवाज।

अनाज पीसण दी रसम। पंजाब दे वासी पहला अनाज नू घर लगियां हथ चक्कियां राही पीस के आटा बनाउंदे सन। व्याह शादियां विच आटे ते दालां दी काफी लागत होण करके व्याह तो काफी दिन पहला ही लोकां दियां चक्कियां इकट्ठियां करके महल्ले दियां औरतां नू बुला के ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪੀਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

बल्ले बल्ले कुंड थले दुपट्टे अग बल्ले कुंड थले दुपट्टे अग बल्ले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की

0: बुद्धि होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत एमटीएल गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है, एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय से बचाव अभियान जारी है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा प्रोटोकॉल और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल उसने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। और गणपति उत्सव का मतलब केवल पूजा ही नहीं है, इसका मतलब है खुशी, उमंग, नाच और बप्पा के साथ खुलकर, दिल खोलकर जश्न मनाना। और इस जश्न को बॉलीवुड का जब तड़का मिलता है तो ये वाला गाना है, आपको याद आता है कि नहीं आता है? जी हाँ, डॉन फिल्म का ये गाना गणपति उत्सव के रंग में मुंबई की गलियों में एनर्जी और ढोल ताशों की धड़कन को एक साथ लेकर आता है। फेस्टिवल मूड को और हाई करते हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं बॉलीवुड रेस और बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार जायकेदार खबरों के साथ आपके साथ हूं मैं आकृति खंडूरी। फिलहाल बॉलीवुड की अपडेट जो हम तक सबसे पहली आज के प्रोग्राम में आ रही है वो मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बन रही अपकमिंग फिल्म दायरा के बारे में है, जो कि इसी फ्राइडे को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने वाली है। और रिलीज से ठीक पहले फिल्म के मेकर्स ने थ्रिलर फिल्म के मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनके इंटेंस पोस्टर्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। फिल्म में एक्ट्रेस करीना कपूर खान और एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन हैं जो मेन लीड में हैं। और अभी सैटरडे को ही इस फिल्म के मेकर्स ने करीना कपूर के किरदार डीएसपी अजूनी कोहली का नया पोस्टर जारी किया था। और कल जो है पृथ्वीराज के दमदार किरदार डीसीपी रमन कुमार का एक नया पोस्टर जो है वो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीना और पृथ्वीराज की ये एक सच्ची घटना पर आधारित इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा फिल्म है, जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स की भूमिका निभा रहे हैं। मेघना गुलजार हैं वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं और साथ ही साथ करीना और पृथ्वीराज के अलावा इस फिल्म में जितेंद्र जोशी, क्षिति जोग, संदेश कुलकर्णी, तृप्ति खामकर जैसे कलाकार हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 18 सितंबर को ये फिल्म जो है ये सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने के लिए तैयार है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आज फिर लेट हो गए?
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दुनिया बॉलीवुड रेस में भी अगली अपडेट हमारी प्रीति जिंटा के बारे में ही है. उन्हीं की फिल्म का ये ट्रैक भी मैं प्ले कर रही हूँ. और खास बात ये है जो अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी वाइब फिल्म जो कि एक्शन कॉमेडी है 18 सितंबर को यानी कि इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है. और बहुत सालों के बाद प्रीति जिंटा जो है इस फिल्म में वापसी कर रही है. फिल्म में उनके साथ कुणाल खेमू भी हैं और साथ ही साथ लापता लेडीज फेम वाली स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर भी इसमें नजर आएंगे. फिल्म का डायरेक्शन और साथ ही साथ फिल्म को लिखा भी कुणाल खेमू ने ही है. और अगर बात करें कुणाल की तो मडगांव एक्सप्रेस के बाद जो कि 2024 में रिलीज हुई थी ये उनकी दूसरी फिल्म है जिसको वो डायरेक्ट कर रहे हैं. दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो अपनी जिंदगी खुद ठीक से नहीं संभाल पाते लेकिन एक गलती करते हैं और एक साजिश में जो है ये कहीं पर फंस जाते हैं. 18 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है. इसका मुकाबला होगा, हमने अभी मैंशन किया था, दायरा फिल्म का करीना कपूर की फिल्म. दोनों फिल्म जो है 18 सितंबर को रिलीज हो रही है और बहुत ही लंबे टाइम के बाद प्रीति जिंटा जो है इस फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही है.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड ट्रेस सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर, जिसे आप सुन सकते हैं 102.6 MHz की फ्रीक्वेंसी पर, या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप न्यूज ऑन एयर ऐप या फिर वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप आकाशवाणी रेनबो से। फिलहाल बॉलीवुड में हमने आपको बताया कि इस फ्राइडे को 2 फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। दायरा की हमने आपसे बात की, वाइब्स प्रेटी जिंटा जिसके साथ एक बार फिर कम बैक कर रही हैं बहुत सालों के बाद, वो भी 18 सितंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा 25 सितंबर को इसी महीने रिलीज होगी फिल्म द वन फॉर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, अनूप सोनी की ये फिल्म है। एक्शन एडवेंचर फैंटेसी है, और इस फिल्म में उनके अलावा दीपक कुमार और अरुणाप कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इसके अलावा एक और फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन, वो भी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। इसकी रिलीज डेट है 2 अक्टूबर की। अभिषेक पाठक की दृश्यम द कंक्लूजन एक मिस्ट्री थ्रिलर है, और दृश्यम सीक्वल का तीसरा पार्ट है ये। इसमें अजय देवगन है, जयदीप अहलावत

0: हैं, प्रकाश राज हैं, तब्बू हैं और रजत कपूर जैसे आर्टिस्ट हैं। 2 अक्टूबर को दृश्यम द कंक्लूजन जो है वो रिलीज होने वाली है।
1: तो उड़ जा, तो मुड़ जा।

बॉलीवुड रील्स आकाशवाणी रेनबो पर और आकाशवाणी रेनबो क्योंकि बॉलीवुड रील्स में अब वो समय आ चुका है जब हम आपसे पूछने वाले हैं बॉलीवुड सरताज का आज का सवाल और इस सवाल का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले सही पहुंचाकर बन सकते हैं आप आज के बॉलीवुड सरताज। प्रस्तुत है आज का सवाल दायरा फिल्म जो कि इसी फ्राइडे को 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। आपने मुझे ये बताना है कि दायरा फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है। हमने इस बारे में चर्चा आज के प्रोग्राम में भी की थी। करीना कपूर हैं इस फिल्म में, पृथ्वीराज सुकुमारन है और इसी फ्राइडे को रिलीज हो रही है। बताइए मुझे दायरा फिल्म के डायरेक्टर कौन है, किसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड सरताज सवाल हमने आपसे पूछा था कि दायरा फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। ये फिल्म जो कि 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है और करिश्मा कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म में लीड रोल पर हैं। आप में से बहुत से लोगों ने हम तक इस फिल्म के जो ये सवाल जो था इसका फिल्म का नाम बताया है, लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस फिल्म का डायरेक्टर जो है उनका सही नाम बताकर आज बॉलीवुड सरताज का जो खिताब जीत रहे हैं वो कौन है बताते हैं।

जी हाँ, तो इस डायरेक्टर का सही नाम जो कि है मेघना गुलजार, हम तक सबसे पहले पहुंचाने वाले हैं कृष्ण कुमार मिश्र, जो कि दिल्ली के हैं और इसी सवाल के सही जवाब के साथ बनते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। बहुत बहुत बधाई हो कृष्ण कुमार मिश्र जी आपको। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने सही जवाब हम तक पहुंचाए हैं, सभी का नाम जरूर लेना चाहूंगी। सलीम मलिक साहब, उनका भी सही जवाब आया है। तरुण कोहली सूरज कुंड से, प्रवीण चौहान साहब हम तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मैसेज देने वाले हैं मसूद मिर्जा, पूजा और कोमल हरिनगर दिल्ली से। ये मैसेज हम तक आया है अनिल शाह साहब का उत्तम नगर से। इसके अलावा पंकज का अमरावती से, धर्म भाटिया जी का ईशा धर्मशाला से, मेघना गुलजार बताने वाले उमेश कुमार, मेघना गुलजार कहने वाले कंचन सोनिया विहार से, तौफीक अहमद साहब अंशु सोनिया विहार से, राजकुमार के संतानी साहब का भी मैसेज हम तक आया है, कमलेश यादव करनाल से, मेघना गुलजार कहने वाले मनोज कुमार साहब भवाना हरियाणा से, फैज शिव विहार से, उत्तम नगर से, फहीम खान मेघना गुलजार इन्होंने भी सही बात कही है, ऋषि कटारिया, पवन कटारिया, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, इनका भी सही जवाब हम तक पहुंचा है। इसके अलावा ये हैं प्रवीण दिल्ली से, लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब जो कि है दायरा को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, बताने वाले कृष्ण कुमार मिश्र दिल्ली से, जो बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज। और इसी के साथ मैं यानी कि आकृति भी बॉलीवुड सरताज से फिलहाल विदा लेती हूं। कुछ ही मिनटों में पूजा आपके साथ रहेंगी प्लेट को लेकर, और 1 बजे आज हिंदी दिवस है और रेनबो हेल्पलाइन में भी आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर ही बात करेंगे। और कहते हैं ना कि इंसान की पहचान केवल उसके नाम से नहीं होती, उसकी आवाज से होती है, उसके विचारों से होती है, और उन विचारों को किन शब्दों से वो किस भाषा में प्रकट करता है उससे भी होती है। और आपकी और हमारी वो भाषा है हिंदी, जो हमारी पहचान का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हेल्पलाइन में बात होगी हिंदी हमारी बात हमारी। हमारे साथ होंगे अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर राव राय, जो कि पूर्व प्राध्यापक हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैं आकृति ही आपके साथ रहूंगी 1:02 से 2 बजे तक। आशियाना प्रोग्राम लेकर 2:02 पर आएंगी शालिनी खंडेलवाल, और 3 बजे आज रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में बात होगी जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर्स की। और हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए बहुत ही अनुभवी डॉक्टर्स होंगे पैनल में, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जो कि एक्स ट्रॉमा सेंटर चीफ हैं एम्स के, और डॉक्टर प्रसून चैटर्जी जो कि वो भी एम्स के पूर्व डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन में हैं। और जरूर जानिएगा, स्पेशली ओल्ड एज में जेरियाट्रिक हिप फ्रैक्चर जो है वो बहुत होता है, क्या करना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होता है, बहुत जानकारियां आपको मिलेंगी इस विषय में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी

0: समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Rajbhasha Sammelan, official language conference in Navi Mumbai today. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said that Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
0: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce the Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP-NDA-ruled states before 2029. Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. The Home Minister also said a system is being established to ensure justice can be delivered within 3 years. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown, where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across. India hosted the BRICS summit on September 12th and 13th, and it was attended by the leaders of the 11 member countries and 10 partner countries of the grouping, besides some international organizations. Mr. Modi also held 15 sit-down bilateral meetings with heads of state or heads of government in the last 3 days on the sidelines of the summit. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated Prime Minister Narendra Modi for the success of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying its success left an indelible mark on the global stage. He said the signing of the

विघनहर्ता मंगलकर्ता बुद्धि ते ज्ञान दे देवता श्री गणेश जी। आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे श्रोतियो, गणेश चतुर्थी दे पावन मौके ते मिति 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 1:15 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दी विशेष पेशकश।

परंपरा अते भक्ति नाल रंगिया एक खास प्रोग्राम ता फिर सुनना ना भूलना। मिति 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 1:15 बजे आकाशवाणी बठिंडा दी ए विशेष पेशकश। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन सतपाल बराड़।

प्रोग्राम संबंधी सूचना 14 सितंबर दिन सोमवार प्रोग्राम कर परिवार के तहत सिलसिला सेहत संभाल विषय रहेगा छाती अते साह दियां बीमारियां। इस महत्वपूर्ण विषय ते जानकारी देने लई साडे स्टूडियो विच हाजिर होंगे डॉक्टर आंचल जैन जिन्हां नाल गलबात करनगे आकांक्षा अरोड़ा। जिन्हां श्रोतिया ने इस विषय संबंधी कोई सवाल पूछना होवे जां जानकारी लेनी होवे वो साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते कॉल कर सकते ने। इस प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन बड़ियाल अस्पताल बठिंडा। सो सुनना ना भूलना 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 12:30 सिलसिला सेहत संभाल। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा।

अनाज पीसण दी रसम। पंजाब दे वासी पहला अनाज नूं घर लगियां हथ चक्कियां राही पीस के आटा बनाउंदे सन। व्याह शादियां विच आटे ते दालां दी काफी लागत होण करके व्याह तो काफी दिन पहला ही लोकां दियां चक्कियां इकट्ठियां करके महल्ले दियां औरतां नूं बुला के ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪੀਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

0: 2 वीक्स है, मतलब क्रॉनिक कफ हुआ। खांसी में बलगम जो है वो चिट्ठा सा नहीं, पीले रंग का आ रहा है, हरे रंग का आ रहा है, या खांसी के साथ खून आ रहा है, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, एपेटाइट लॉस हो रहा है, पेशेंट को हमेशा थकावट थकावट रह रही है, मतलब नींद नहीं आ रही है, बीपी शूट अप हो रहा है, या फिर छाती में दर्द हो रहा है, धीरे धीरे दर्द हो रहा है, या ये सब कारण है जिनके चलते मरीज को डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, जे अज असी देखिए तो साह फुल्लन दी एक बहुत ही आम घटना सानू मिलती है, फिर चाहे वह बच्चों च होवे या वड्डियां च या बजुर्गों के विच, तां कि हर उम्र विच साह फुल्लना फेफड़ियां दी समस्या वाले इशारा करता है।
0: नहीं, कभी कभी होता है ओबेसिटी इटसेल्फ भी। हम पेशेंट का क्या होता है कि ना, बहुत ज्यादा पतला था, एकदम से मोटा होने लग गया, तो लंग कंप्रेस होगा, उसके चलते भी सांस फूल सकता है। कभी किडनी के पेशेंट जो होते हैं, सीकेडी के पेशेंट, उनमें भी सांस फूल सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं, थायराइड के पेशेंट में भी सांस फूल सकता है। तो अंडरलाइंग लंग डिजीज एक कॉज हो सकता है, उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन भी होती है जिनके चलते सांस फूल सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जे असी बच्चों की गल कर रहे सी, तो बच्चों के विच अजकल सानू साह या फेफड़ियां नाल जो जुड़ियां कैड़ियां बीमारियां आम देखने मिल रही हैं।
0: जैसे छोटे बच्चों की बात करें तो एलर्जिक हो सकता है, जैसे न्यूमोनिया बिगड़ गया है बचपन में, ब्रोंकेक्टेसिस हो सकता है, लंग एब्सेस भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। पेशेंट बच्चे जो होते हैं वो लोग है ना, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, इम्यूनिटी वीक है, या बाहर का जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो ओबेसिटी इटसेल्फ कैन कॉज। थायराइड डिसऑर्डर भी हो सकता है, एलर्जिक बहुत कॉमन है, जैसे हेरिडिटरी जेनेटिक जो होता है वो भी हो सकता है। पोल्यूशन इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर
1: जी
0: फॉर योर हेल्थ।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर साढ़े नाल जुड़ गए ने, उन्होंने कॉलर ने।
2: हेलो, सत
1: हेलो, सत श्रीकाल जी, कौन ते कितों बोल रहे
2: श्रीकाल
1: हो?
2: जी, डॉक्टर
0: सत श्रीकाल।
2: साहब
0: दमा की बीमारी पुरानी 20 साल से है,
2: जी,
0: क्या दिक्कत है आपको?
2: अच्छा,
0: दवाई लेते हो टाइम से? कोई दवाई बताइए किसी ने?
2: बठिंडो मैं ले ली, सारे ले ली दवाई, मैं
0: अच्छा।
2: लुधियाना मैं ले ली, सारे ले ली।
0: कोई जांच वगैरह कुछ करवाई है आपने? जांच करवाई है?
2: जांच तो कराई, वो सारे सर्चे भी कराई थी, बठिंडे भी कराई थी, सरकारी का दवा हट देना है।
0: अच्छा, एक बार छाती रोग विशेषज्ञ जो पल्मोनोलॉजिस्ट होता है ना, उनको दिखा लीजिए।
2: काफी निकल जाते, बंद बनी जाते, 10-12 कर निकल जाते, निकल जाते, बन जाते, निकल जाते, अंदर पर रहेंगे नहीं, बाहर आ जाती है।
0: अच्छा, एक बार आपको दिखाना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट को दिखा लो, छाती के स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना पल्मोनोलॉजिस्ट, उनको दिखा लीजिए।
2: हार्दिक
0: हाँ,
2: है। अच्छा जी,
0: एक बार बिना देखे तो नहीं बता सकते, देख के ही बताएंगे क्या बीमारी है क्या नहीं, है ना?
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह दमे दी बीमारी दी गल कर रहे सी कि दमा ते अस्थमा सेम चीज ने जी, ते डॉक्टर साहब जेकर असी अस्थमा या दमे दी गल करते हैं तो कि ये सिर्फ जेनेटिक हुंदा या परिवार दे विच हुंदा, या कोई होर भी कारण हो सकते ने अस्थमा दे?
0: इसके देखो, जेनेटिक तो होता ही है, साथ में एलर्जिक, किसी को किसी चीज से एलर्जी है, कोई फूड एलर्जन है, या फिर एरो एलर्जन है, डस्ट पार्टिकल्स है उसके चलते भी हो सकता है, फंगस से एलर्जी है, या पोलन से भी एलर्जी है, तो उनके चलते भी हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं इसके,
1: जी, तो इस दे मुख्य लक्षण की हैं डॉक्टर साहब?
0: जैसे सांस फूलते हुए सीटी जैसी आवाज आना, सूखी खांसी होना, रात में ज्यादा सांस फूलना, एकदम से चेस्ट जो है वो भारी भारी लगना, छाती भारी भारी लगना, खांसी रुकी नहीं रही है, और जैसे खट्टी डकारे आना, कफ एसोसिएटेड विद जीआरडी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कभी कभी मरीज जो होता है वो सिर्फ कफ के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और कोई लक्षण नहीं होगा, सिर्फ कफ होगा, तो दैट इज कफ वेरिएंट एस्मा भी हो सकता है उसको,
1: जी
0: अडल्ट ऑनसेट भी हो सकता है, चाइल्डहुड ऑनसेट भी हो सकता है एस्मा। ठीक है
1: जी डॉक्टर साहब, की अस्थमा दा अज साडे कोल मुकम्मल इलाज उपलब्ध है?
0: हाँ, अस्थमा देखो ये है कि अगर आप टाइमली दवाई लेंगे

0: तो कंट्रोल हो सकता है, नहीं लेंगे तो इट विल लैंड अप इन स्टेटस अस्थमाटिकस, मतलब सीरियस बीमारी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ना पेशेंट इनहेलर तो ले रहा है लेकिन टाइम से नहीं ले रहा है, जैसे आज ले लिया 10 दिन बाद ले लिया, तो कैसे ठीक होगा वो? अगर हम दवाई टाइम से नहीं लेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते हैं। तो कंट्रोल हो सकता है हर बीमारी का अगर टाइमली दवाई ली जाए तो।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो एक अस्थमा दे पेशेंट केड़ियां सावधानियां बरत सकता है?
0: सबसे पहले तो अगर किसी एलर्जिक जैसे है, जैसे पोलेंस वगैरह से है, तो उसको मास्क लगा के जाना चाहिए उस सीजन में। दूसरा है सीरम आईजी लेवल करवाना चाहिए, किससे है ब्लड एलर्जन लेवल्स भी करवाना चाहिए, एसपीटी स्किन प्रिक टेस्ट होता है उससे करवा के देखना चाहिए, पीएफटी करवा के देखना चाहिए कि ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी है या नहीं, ये सब करवाना चाहिए।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक होर कॉलर साढ़े नाल जुड़ गए ने। हेलो,
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
1: सत
2: सत
1: श्री
2: श्री
1: अकाल
2: अकाल,
1: जी।
2: सत श्री अकाल भाई, डॉक्टर साहब नु भी सत श्री अकाल।
0: सत
2: हाँ
0: श्री अकाल, कौन
2: जी,
0: कितने?
2: मैं बांस तो बोलता सी, जीत सिंह। हाँ
1: जी
2: जी, मैनू ना अजकल 10-20 दिन बाद मतलब सारी कसर जी हो जाती है। एक महीना, 10वां महीना, ते उधरों तीजा महीना मार्च दा।
0: अच्छा।
2: हाँ जी,
0: उस समय क्या होता है? नाक बहना, छींके आना, ऐसा कुछ होता है?
2: है जी।
0: नाक बहना, छींके आना, या छाती में भारीपन जैसा लगना, ऐसा कुछ होता है उस समय
2: नहीं
0: मार्च
2: मैं
0: में?
2: तो
0: और
2: मतलब ना ज्यादा जा बन जाता, ज्यादा जा।
0: अच्छा, ज्वाला सा बन जाता है।
2: हाँ जी साहब, में कोई घंटा का या 2 घंटे ऐसे जो हो जाता है।
0: अच्छा, फिर क्या करते हो उस समय?
2: बस जी, कोई बाप ही राम आया, कोई गोई गोई पहला मैं दवाइयां दूंगा बथेरिया लेंदा रहा, कोई फायदा नहीं होया, फिर वो हार हटिया नहीं, जानी कि छोटे होंगे तो चली जाता काम जी। ये
0: अच्छा, ठीक
2: हुण
0: है,
2: मैं
0: एक
2: मेरी
0: बार हाँ दिखा
2: सब
0: लीजिए, दिखा के ही पता चलेगा। चेस्ट वगैरह भी ऑस्कल्टेट करके देखना होगा। ठीक है, ठीक
2: खान पीन का तो मैं परहेज बहुत रखता जी।
0: है, बहुत बढ़िया
2: हाँ जी, मतलब
1: जी, बहुत बहुत।
2: घ्यो घू या 100 रुपये यानी बरतते, देसी बरतते, बाकी हूं तो 6 महीने जी, हूं हजे 15 दिनों चलूगा काम।
0: हाँ, उस समय ही होता है जैसे जो सांस वाले मरीज होते हैं उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत होती है उनको।
2: ठीक है जी,
0: ठीक है
2: ठीक।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने दिली। डॉक्टर साहब, जेकर असी निमोनिया की गल करिए तां इस दा इलाज करवाउण विच आम लोग अक्सर देर कर देंदे ने, तां इस नूं समय रहिंदे किवें फड़िया जा सकदा है ते इस तों बचाव किवें हो सकदा है?
0: सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्या होता है एक दिन गैप बुखार हुआ मरीज को, तो क्या करते हैं, जाके दवाई ले लेगा काउंटर पे जाके, मेडिकल स्टोर पे जाके, फिर दूसरे दिन किसी और के पास जाके ले लेगा। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लो। क्यों? क्योंकि इतना रेजिस्टेंस हो रहा है, ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है कि दवाई फिर काम ही नहीं करती है, फिर निमोनिया बिगड़ने लग जाता है। निमोनिया जो होता है छाती में जैसे सफेद दाग जैसे धब्बे जैसे हो जाते हैं, ये बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, जो अभी फ्लू सीजन जो चल रहा है इसमें भी पेशेंट बहुत ज्यादा सिक होके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ARDS, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। कभी कभी वेंटिलेटर पे भी चला जाता है पेशेंट उस के चलते, तो इसीलिए टाइमली मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो आप सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का काम या किता भी अजिहा होंदा है कि उन्होंने लगातार धूड़ या पोल्यूशन दे विच रहना पैंदा है, तो अजिहे लोगों विच फेफड़े नाल संबंधित बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने कैसी सावधानियां बरतनिया चाहिए ने, ते कैसी बीमारियां ने जिन्हों तो उन्होंने सावधान रहना चाहिए?
0: जैसे सबसे पहले तो अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना चाहिए, ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए,
1: जी
0: फर्स्ट थिंग। दूसरा कि आप ह्यूमिडिफायर वगैरह प्यूरिफायर वगैरह लगा सकते हैं घर पे, पॉसिबल हो तो, नहीं तो आप जहाँ पे काम करते हैं उसमें एग्जॉस्ट फैन भी होना चाहिए, मास्क लगा के काम करो और अपनी लंग कैपेसिटी टाइम टू टाइम चेक करवाते रहो।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बीमारी जो असीं अक्सर किते दे नाल जोड़ दिंदे आ या देखण नूं मिल जांदी है, COPD, ये की बीमारी है ते ये आम किन्नी पाई जा रही है अजकल?
0: COPD जो है वो ओल्ड एज में जैसे किसी को नहीं पता है तो हर कोई लेबल कर देता है COPD। COPD है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये दो टाइप की होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एस्मा, सॉरी एस्मा नहीं, एम्फाइसीमा।
1: जी
0: इसमें क्या होता है कि जैसे कफ के साथ बलगम बहुत ज्यादा आता है, सांस फूल जाता है, छाती में भारीपन लगना, कॉर्पी के चेंजेस आते हैं, तब पैरों में सूजन हो जाना। कॉर्पी जो है वो हार्ट, राइट हार्ट फेलियर के चलते

0: होता है, ये आगे जाके दिक्कत होती है। जैसे टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में भी पेशेंट चला जाता है, CO2 बढ़ने लग जाता है। कभी कभी पूछा जाता है मरीज को, कभी वेंटिलेटर पे गए थे, छोटा बाइपैप लगा था, वो बोलता है हाँ हर साल, हर साल लगता है मुझे। मतलब आपकी मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ती जा रही है, तो आप टाइमली दवाई लें और सही से इलाज करवाएं। दूसरा ये है, अगर आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई धूम्रपान करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उसको साथ में छोड़ना भी चाहिए।
1: जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक कॉलर साढ़े नाल जुड़ गए ने, आओ लेने।
2: सत
1: हेलो,
2: श्रीकाल,
1: सत श्री अकाल जी, अपना नाम दस दो।
2: मेरा नाम जी जगदीप सिंह है, इचनाक तो बोल रहा हूँ।
1: जी, की सवाल पूछना चाहोगे डॉक्टर साहब नु
2: ये
1: तुसी?
2: बच्चा जी 10 सालों का है ना जी, खांसी नहीं हट रही जी, उन्होंने टेस्ट भी करवाए सी उन्होंने जी सरकारी अस्पताल च, मैडम है जिहड़ियां बच्चे वालियां उन्होंने भी दिखाया सी, ते खांसी नहीं हट रही जी, हुण छाती साफ है जी, डॉक्टर कहते हैं छाती साफ है।
0: अच्छा, खांसी जो है सूखी है या बलगम वाली है?
2: नहीं बलगम तो नहीं आउंदी जी, बच्चा का वो ना था बलगम करे, खांसी छिड़न नहीं, खंघ पिछे जी एलर्जी वाली गोली दे दिए या सीसी दे दिए, हटी रहती है जी।
0: अच्छा, तो
2: हाँ
0: आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं उसके?
2: मैडम टेस्ट ना दूसरे सर्टिफिकेट वगैरह वो तो कराया जी, तो कुछ है नहीं, छाती साफ है जी।
0: अच्छा, छाती साफ है,
2: हाँ जी
0: तो फिर एक बार आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लंबे से मैं अगर खांसी रहती है तो ठीक नहीं है।
2: हाँ जी बाबा चेर हो गया जी, डॉक्टर प्राइवेट ने दिखाया जी, वो भी चंडीगढ़ वाले दवाई ली मैडम, तो वो भी कहने भी एलर्जी है नू।
0: हाँ, एलर्जी का तो इलाज लंबा चलता
2: हाँ जी हाँ
0: है ना,
2: जी
0: एक बार दिखा लीजिएगा। ठीक है
2: हाँ हाँ
1: जी,
2: ठीक है मैडम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, अक्सर लंबी खंघ ते ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी नू जोड़ के देखा जाता है, तां अज टीबी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है भारत के लिए। अजिहे विच इस दे फैलन ते इस तो बचा लिए असी की कर सकते हैं?
0: सबसे पहले वही जो मैंने पहले भी बोला है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है,
1: जी
0: ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है। दूसरा, अगर दो तरह का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी लंग्स वाला जो होता है वो यूजुअली फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्पूटम से होता है वो, इसलिए। तो उन पेशेंट्स के जो रूम्स होते हैं उनको प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखना चाहिए, धूप आनी चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन भी होना चाहिए, स्पूटम कप देना चाहिए, इधर उधर स्पिट आउट ना करें वो लोग।
1: जी
0: और जैसे घर में एक बार सबको स्क्रीनिंग भी करवाना चाहिए उस टाइम पे। और मेनली ये है, जो टीबी की गोली जो गवर्नमेंट भी देती है और प्राइवेट भी होती है, जो भी जिसकी इच्छा हो वो ले सकता है, तो वो कोर्स पूरा करें। ऐसा नहीं 1 महीने में बुखार ठीक हो गया, खांसी ठीक हो गया, या भूख लग गई तो मैं ठीक हो गया तो दवाई बंद कर दें।
1: जी
0: पूरा कोर्स 6 मंथ्स का होता है, अगर वो ड्रग सेंसिटिव है तो, और ड्रग रेजिस्टेंस है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उससे बचने के लिए ट्रीटमेंट पूरा करो, और अपनी लंग कैपेसिटी वगैरह भी चेक करवा लो बाद में कि कैसे क्या है, और उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत संपर्क करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरह तुसी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी दी गल कीती ते नियमित इलाज बारे कहा, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इन्ना खतरनाक क्यों मनिया जांदा है?
0: सीधी सी बात है, दवाइयां सिंपल जो है वो काम ही नहीं करेंगी, जो
1: जी
0: बेसिक होती हैं। हायर देना पड़ेगा, हायर डोज देना पड़ेगा, और वो जो होता है रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट होता है, वो जो टीबी है MDR TB, XDR TB हम बोलते हैं। अब तो XDR का बहुत बढ़िया सरकार ने इलाज भी, बिडाक्लिन करके ड्रग आती है वो स्टार्ट करवाया, काफी सालों से दे रहे हैं। तो उसमें ये है कि ना, पेशेंट जो है ना वो कंप्लाइंट नहीं होता इतना। टीबी का बेसिलाई क्या है, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया ही है,
1: जी
0: तो वो अपने ऑक्सीजन जो होती है उसको खाता है,
1: जी
0: फेफड़ों में या कहीं पे भी होगा, जैसे पल्मोनरी, प्लूरल, एब्डोमिनल, स्पाइनल टीबी, आंख का भी हो सकता है, ऑक्यूलर टीबी, बहुत सारे तरह के टीबी होते हैं। उसमें बेसिकली ये है कि है ना, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो होता है वो दवाई हम जो देना चाहते हैं बेसिक ड्रग्स वो नहीं देते, वो हायर डोज देनी पड़ती है, पेशेंट कंप्लायंट नहीं होता, इम्यूनिटी और ज्यादा वीक होती है। एक बार टीबी होगा, 2 बार टीबी होगा, 3 बार होगा, पेशेंट एकदम ही पूरा वीक हो जाता है। और HIV, HBsAg जो पॉजिटिव होते हैं उनमें भी बहुत चांसेस है टीबी होने की, क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम होता है।
1: जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक कॉलर साढ़े नाल जुड़ गए ने। हेलो,
2: हेलो
1: नमस्कार जी,
2: नमस्कार जी, अजीत
1: अपना नाम दस दो।
2: सिंह पिंड ख्याली वाला जी, जिला बठिंडा जी।
1: जी अजीत सिंह जी, की सवाल पूछना चाहूंगे?

विघन हरता मंगल करता बुद्धि ते ज्ञान दे देवता श्री गणेश जी। आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे श्रोतियो, गणेश चतुर्थी दे पावन मौके ते मिति 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 1:15 बजे तुसी सुनोगे आकाशवाणी बठिंडा दी विशेष पेशकश।

अनाज पीसण दी रसम। पंजाब दे वासी पहला अनाज नू घर लगियां हथ चक्कियां राही पीस के आटा बनाउंदे सन। व्याह शादियां विच आटे ते दालां दी काफी लागत होण करके व्याह तो काफी दिन पहला ही लोकां दियां चक्कियां इकट्ठियां करके महल्ले दियां औरतां नू बुला के ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪੀਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

0: ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਚਕ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਪਾਦਨ ਮਮਤਾ ਅਰੋੜਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ।
1: छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी। छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी। छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
0: जीवन दे हर सवाल दा जवाब श्रीमद भागवत गीता दे अनमोल ज्ञान विच।

जिस जो हर मंगलवार प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत तुसी अजकल सर्वन कर रहे हो श्रीमद भागवत गीता अते इस मंगलवार मिति 15 सितंबर शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोगे श्रीमद भागवत गीता दे 5वें अध्याय दी सरल अते सौखी व्याख्या।

डूंगा संदेश बिल्कुल सौखी पंजाबी विच। वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

0: वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है?
1: इन्फ्लुएंजा जो है वो सीजनल है, H1N1 फ्लू जो अभी चल रहा है इस टाइम पे, सितंबर अक्टूबर में ये पीक होता है, और पीडियाट्रिक से लेकर सभी किसी को भी हो सकता है ये। इसका वैक्सीनेशन हमें हर साल करवाना चाहिए, टेट्रावेलेंट करके स्ट्रेन है उससे ही होता है, और वैक्सीनेशन हर ईयर होता है, इस चीज का ध्यान रखना होता है ना, क्योंकि हमेशा स्ट्रेन चेंज होता है। इसके सिम्टम्स जो है वो ऐसे होते हैं, सर में दर्द होना, आंखों में जलन होना, सूखी खांसी होना, फीवर हाई ग्रेड होना 101-102, शरीर में टूटन होना, खांसी रुकी नहीं रही है, छाती में भारीपन होना, ये सब फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, रनिंग नोज वगैरह। तो जैसा भी हो आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि लेट स्टेजेस में जैसे और भी लंग इन्फ्लुएंजा के साथ जैसे पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, सीकेडी का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट है, इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए।
0: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर साढ़े नाल जुड़ गए नी। हेलो हेलो
2: नमस्कार,
0: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
2: अच्छा,
1: कब से हो रही है? पहली बात तो ये बताइए उम्र क्या है आपकी?
2: है उम्र 55 साल जी।
1: अच्छा, और कब से सांस में दिक्कत हो रही है?
2: जो रोटी खा लेने उदो बद हो जाती है जी, रोटी पूरी खादी नहीं जाती।
1: अच्छा, खाई नहीं जाती तो उल्टी जैसा भी लगता है?
2: ना ना, कोई है जानी चक्कर जी।
1: अच्छा, ठीक है, एक बार मतलब दिखा लीजिए, है ना?
2: ठीक है जी, आप थोड़ा जी दिखा देंगे जी, कदों मिल गए जी।
0: जी
2: बड़े तंग आज
0: जी। हाँ। इस बारे जानकारी तो प्रोग्राम विच मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए डॉक्टर साहब। जिस तरह निकोटीन सिगरेट या टबैको की जो आदत है, इस दी रोकथाम लई की अज साडे कोल कोई सुविधावां अवेलेबल नहीं?
1: हाँ, इसके देखो जैसे होता है फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी मेडिसिन वाला होगा दैट इज फार्मेकोलॉजिकल। नॉन फार्मेकोलॉजिकल में काउंसलिंग होती है, साइकेट्रिक सेशंस होते हैं, और जैसे हम लोग भी काउंसलिंग करते हैं कि हाँ भाई, डिपेंड करता है पेशेंट कौन सा सिगरेट ले रहा है, यानी तुरंत बेड से उठते ही ले रहा है या रात में सोते हुए ले रहा है या दिन में ओवरऑल ले रहा है, तो उसी डिपेंड उस क्वेश्चनेयर होता है एक जो पूछा जाता है, उसके बाद वो स्कोरिंग की जाती है, कितनी सिगरेट लेता है, कितनी बीड़ी लेता है, उसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग होती है। सबसे पहले कोई भी चीज हो, विलिंग है या नहीं उस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद अब तो बहुत मेडिसिन आ गई है स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, वर्निसिलिन है, बहुत है, निकोटिन गम्स हैं, टैबलेट्स हैं, वो सब है। ठीक है
0: जी डॉक्टर साहब, कोई सरकारी सुविधावां जो फेफड़ों के इलाज ले कार्ड या कोई?
1: हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी अवेलेबल है, ECHS कार्ड भी है, सारे इंश्योरेंस वगैरह सब कवर होते हैं, जो प्रधानमंत्री योजना है वो वाले कार्ड्स भी सब अवेलेबल हैं, तो कोई भी दिक्कत हो मुफ्त में इलाज होता है
0: जी।
1: बहुत कार्ड के द्वारा मुफ्त में इलाज होता है
0: जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक आम देखते हैं कि एलर्जिया दे मौसम दे विच खंघ जुकाम हुंदा है, ता ओवर द काउंटर या फार्मेसी तो जाके कफ सिरप्स या दवाइयां एंटीबायोटिक्स ले लेते जांदे ने अक्सर, इस बारे साडे श्रोतियों नूं थोड़ा जा सावधान।
1: देखो क्या होता है, पेशेंट मतलब जो भी है वो देखता है अरे बाबा कौन जाएगा, जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं
0: जी।
1: लेकिन उससे क्या होता है कि पता ही नहीं चलता उसको खांसी कब हो रही है और क्यों हो रही है, और कोई भी बीमारी हो, नाक बहना, छींके आना, ये सब, ये सांप फूलना, दो दिन में ठीक हो जाएगा, फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है, 10 दिन में फिर से वापस हुआ या सीजन आया वापस से हुआ। तो एटलीस्ट आपको बीमारी तक तो पहुंचना है ना कि कहां तक है, तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें और ओवर द काउंटर जाके ना ले। एंटीबायोटिक वगैरह तो ऐसे लेना ही नहीं है, क्यों इतना रेजिस्टेंस आ रहा है इंडिया में, इसीलिए तो आ रहा है कोई भी, हमने तो अमोक्सिक्लेव ले लिया, एजिथ्रो ले लिया, अरे टॉफी थोड़ी है जो आपने ले लिया, मतलब कुछ नीड होगी तो ही लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक आम इंसान पोल्यूशन तो बचाते फेफड़ों नूं स्वस्थ रखने वास्ते आपकी आम जिंदगी विच केड़ियां आदतां अपना सकता है?
1: अगर जैसे ये सीजन जो होता है पोल्यूशन वाला, प्राली वाला जो सीजन होता है, उस टाइम पे मतलब जो भी है आम आदमी को मास्क लगा के जाना चाहिए, जो सैर का टाइम है वो थोड़ा सा मॉर्निंग में करना चाहिए, दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा पीक होता है क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा खराब होता है
0: जी।
1: आप अपने फोन से ही AQI चेक कर लो
0: जी।

0: अगर बहुत ज्यादा खराब है तो आपको नहीं जाना है, आप घर में ही रहो, घर में वॉक कर लो। अगर फिर भी ऐसा है बाहर जाना है तो उस टाइम पे प्रिकॉशन लेके जाना, मास्क पहन लिया, घर में आप प्यूरिफायर लगा लीजिए, एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं,
1: जी
0: ठीक है। डिस्टेंस से पेशेंट, अगर कोई पेशेंट है आपके आसपास तो आप सिक हैं या कुछ भी हैं तो थोड़ा डिस्टेंस से बात करो, ठीक है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसी आज आकाशवाणी बठिंडा दे वेड़े विच आए ते सानू इन्नी वडमुली जानकारी दिती। इस दे नाल ही मैनू आकांक्षा नू अज दा
2: प्रोग्राम घर परिवार
3: FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा। स्टूडियो दी कड़ी ते समा हो रहा है 1:09:36। ठीक 1:10 ते तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।

ओम गणेशाय नमः। आकाशवाणी दे रब वर्गे प्यारे सरोतियो, आप जी दे चरणा दे विच नतमस्तक है तोड़ा दास बलजीत शर्मा। समूह सरोतिया ते समूह आकाशवाणी परिवार नूं श्री गणेश जन्माष्टमी ते श्री गणेश चतुर्थी दियां बहुत बहुत मुबारकां। एक दंतम महाकायम लंबोदर गजाननम विघ्न नाशकरम देवम हिरंभम प्रणामेहम। जो एक दंद दे नाल सुशोभित है, विशाल शरीर वाले ने, लंबोदर ने, लंबे ने, गजानन ने, ते जो सारे विघ्ना दे विनाशकर्ता ने, मैं उन्ना दिव्य भगवान श्री गणेश जी नूं प्रणाम करदा हां। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत धिताय नागानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वर वर देन वाले देवता दे सब तो नेड़े ते प्यारे लंबोदर सारियां कलावां च परिपूर्ण सारे जग दा हित सोचन वाले हाथी दे समान मुख वाले ते वेदां ते यगां दे नाल विभूषित पार्वती पुत्र नूं बहुत बहुत नमस्कार। हे गणनाथ, आप जी दे चरणां दे विच कोटिन कोट नमस्कार।

श्री गणेश चतुर्थी जिस नूं विनायक चतुर्थी या गणेशो उत्सव वजो भी जाणिया जांदा है एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू देवता श्री गणेश जी दे जन्म दी याद दिवांदा है। त्योहार नूं घरां च निजी तौर ते जनतक तौर ते विस्तृत पंडालां ते श्री गणेश जी दीआं मिट्टी दीआं मूर्तियां दी स्थापना नाल चिन्हित कीता जांदा है। रीती रिवाजां च वैदिक भजन ते हिंदू ग्रंथा दा उच्चारण करना शामिल है जिवें कि प्रार्थनावां ते वर्त रोजाना प्रार्थनावां तों भेटा ते प्रसादा जो पंडाल तों समाज नूं वंडिया जांदा है च मोदकां वर्गियां मिठाइयां शामिल हुंदियां ने क्योंकि इह श्री गणेश जी दी पसंदीदा मिठाई मन्नी जांदी है। त्योहार शुरू होण तों बाद दसवें दिन समाप्त हुंदा है जदों मूर्ति नूं संगीत ते समूहिक जाप दे नाल एक जनतक जलूस च लजाया जांदा है। फिर एक नदी जां समुंदर वर्गे नेड़ले पानी च डबोया जांदा है जिस नूं अनंत चतुर्दशी दे दिन विसर्जन किया जांदा है।

जैन मंदरां चे अलोरा गुफावां चे पंजवीं ते अठवीं सदी दे विचकारे श्री गणेश जी नूं प्रमुख हिंदू देवी शक्ति दे नाल श्रद्धा नाल बैठे दर्शाया गया है। ये त्योहार श्री गणेश जी नूं नवी शुरुआत दे देवता ते रुकावटां नूं दूर करन वाले दे नाल नाल बुद्धि दे देवते वजों मनाउंदे ने ते पूरे भारत ते समुचे पंजाब च वी ये त्योहार बड़ी शानो शौकत नाल मनाया जांदा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ते गोवा च श्री गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम नाल मनाई जांदी है। बाहरले मुल्कां आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, सिंगापुर, मलेशिया, त्रिनाद ते टबैगो, गुआना, सुरीनाम, कैरबियन ते होर हिस्सियां, फीजी, मॉरिशस, दक्षिणी अफ्रीका, संयुक्त राज ते यूरोप गणेश चतुर्थी हर साल 22 अगस्त ते 20 सितंबर दे विचकार मनाउंदे ने। हालांकि असीं इस तथ्य तों अनजाण हां कि श्री गणेश चतुर्थी पहली बार कदों जां किवें मनाई गई सी। ये त्योहार पुणे च राजा शिवाजी मराठा सामराज दे बानी ते समय तो जनतक तौर ते मनाया जांदा है। 18वीं सदी च पेशवा गणेश जी दे श्रद्धालु सन ते भाद्रपद दे महीने च अपनी राजधानी पुणे च एक जनतक गणेश त्योहार वजों शुरू होए सी। ब्रिटिश राज दी शुरुआत तो बाद गणेश त्योहार राज दी सरप्रस्ती गवा बैठा ते भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ते समाज सुधारक श्री लोकमान्य तिलक द्वारा इस दी पुनर्सरजीती तक महाराष्ट्र च यह एक निजी परिवारिक जश्न बन गया। गोवा च गणेश चतुर्थी कदंब युग तो पहला दी मनाई जांदी है। गोवा इनक्यूजिशन ने हिंदू त्योहारां ते पाबंदी लगा दित्ती सी ते हिंदू जो ईसाई धर्म नहीं अपनाउंदे सन उन्हां ते सख्त पाबंदी लगा दित्ती जांदी सी। हालांकि हिंदू गोवा दे लोक पाबंदियां दे बावजूद अपने धर्म दा अभ्यास करदे रहे। बहुत सारे परिवार श्री गणेश जी दी पूजा प्रति गणेश जां होर देवतियां दी पूजा करन लई वरते जांदे पत्ते दे रूप विच ये पूजा करदे सन। कागज़ जां छोटियां चांदी दियां मूर्तियां उत्ते एक तस्वीर खिंची जांदी है। कुछ घरां च श्री गणेश जी दियां मूर्तियां छुपियां होईयां सन जो कि गोवा च श्री गणेश चतुर्थी लई विलक्षण विशेषता है क्योंकि जांच दे हिस्से वजों जैसुइट्स द्वारा मिट्टी दे गणेश दियां मूर्तियां ते त्योहारां ते पाबंदी लगाई गई सी।

महाराष्ट्र च गणेश चतुर्थी नूं गणेश उत्सव वजों जाणिया जांदा है। परिवार त्यौहार दौरान पूजा लई मिट्टी दीआं छोटीआं मूर्तियां स्थापित करदे ने। घर च त्यौहार की तैयारी च कुछ दिन पहला पूजा दीआं वस्तुआं जां उपकरणां की खरीददारी ते एक महीना पहला स्थानक कारीगरां तों गणेश मूर्ति की बुकिंग शामिल हुंदी है। मूर्ति नूं श्री गणेश चतुर्थी दे एक दिन पहला जां अपने आप घर लिआंदा जांदा है। परिवार मूर्ति नूं स्थापित करन तों पहला घर दे एक छोटे साफ हिस्से नूं फुल्लां ते होर रंगीन चीज़ां नाल सजाउंदे ने। जदों मूर्ति स्थापित कीती जांदी है, इस नूं ते इस दे स्थान नूं फुल्लां ते होर समगरी नाल सजाया जांदा है। त्योहार दे दिन मिट्टी दी मूर्ति दी रस्मी स्थापना दिन दे एक खास शुभ समय दौरान भजना समेत पवित्र मंत्रां ते पूजा दे नाल कीती जांदी है। मूर्ति दी सवेर ते शाम नूं फुल्लां, दुर्वा, करंजी ते मौदक, चौल दे आटे दे गुड़ च लपेटिया गुड़ ते

0: report terms security situation in Jammu and Kashmir as stable. Union Home Minister Amit Shah says India's linguistic diversity strengthens unity amidst diversity, congratulates people on occasion of Hindi Divas. IMD predicts heavy rain and thunderstorm for several districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देशभर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिक्कुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुक्कुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकण अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त

अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

0: से नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।

जी श्रोतियो, हर मंगलवार प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत तुसी अजकल सर्वन कर रहे हो श्रीमद भागवत गीता। अते इस मंगलवार मिति 15 सितंबर शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोगे श्रीमद भागवत गीता दे 5वें अध्याय दी सरल अते सौखी व्याख्या।

जानो कर्म त्याग अते आत्मिक शांति दा डूंगा संदेश बिल्कुल सौखी पंजाबी विच। वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

प्रोग्राम दे विच अगला गीत असी सुनांगे हरभजन मान दी आवाज दे विच। इस गीत दी फरमाइश लैके साडे कोल पहुंचे ने पिंड जग्गा राम तीरथ तो लाभ सिंह रतन, खुशदीप सिंह रतन, भोला सिंह बेदी, बग्गा सिंह दलबीर, हरमन बागणिया, गुरबख्श सिंह बंगी, बख्शविंदर सिंह बंगी, गुरलीन कौर बंगी, गुरविंदर कौर बंगी। ये साढ़े कोल पहुंचे ने जी पिंड बग्गी कला तहसील तलवंडी साबो जिला बठिंडा तो, सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका तो, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, एकता कॉलोनी रोहतक तो सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनवी बोट, अंकित कांगड़ा, पिंड ते डाकखाना खुईया सरवर तहसील अबोर जिला फाजिलका तो रमेश चावला, राइजल हेजल विहान चावला, आस्था जयश्री संतोष चावला, हेमंत दीपक रमेश चावला, रिजू बब्बू विहू चावला, इन्हों का पूरा चावला परिवार, पिंड मल्ला नेड़े बाजाखाना तो जोधा सिंह, कौर सिंह बराड़, तेजा सिंह, सुखमंदर सिंह, काका सिंह, बाजाखाना तो गुरमेल चखड़वाला, मंगा पिंड गंगा अबलू ते जिला बठिंडा तो बेटा बंटी, दोती परमप्रीत कौर, इन्हां दे दोस्त गुरमीत सिंह, बिंदर मनिया पत्ती तो मेजर बेरिया वाले, प्रितपाल कौर डोड़ तो। इन्हां सारे ही स्रोतियां दी फरमाइश ते आओ सुनदे आं हरभजन मान दी आवाज़ दे विच अगला गीत।

0: सखी सहेली सभी सखियों को सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
1: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपने सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार।
0: हाँ,
1: और बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
0: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
1: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है,
0: हाँ,
1: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
0: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है।
1: चलिए,
0: तो चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग।
1: जी
0: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे। नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो क्या है आप बताइए।
1: देखिए, आज है हिंदी दिवस। और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया,
0: भाई पूरा देश
1: मना रहा है,
0: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा। आज उनके आगमन का दिन है।
1: बिल्कुल। और चंचल, सच कहूं तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली। तो वो जो हंसी पूरे साल घर में दी रहती है, हम लाते हैं मंगल कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे रहें, सलामत रहें। गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं, और बप्पा आते हैं तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी, कहते ना कि तकलीफों को परेशानियों को हर लेंगे। आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से।
1: ये बात तो
0: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है, या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है, और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति
1: बप्पा मोरिया,
0: मंगल मूर्ति मोरिया।
1: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना, सही बात।

0: और जब पूरा परिवार एक साथ आरती में खड़ा होता है या हमारे सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े होते हैं,
1: हाँ
0: तो सच में ऐसा लगता है पप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है तो।
1: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

भाई तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ गीत, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की। तो सुनते हैं कहानी

0: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
2: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें ना कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर बार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
3: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे,

0: एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथू खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूं। तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
1: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई, मुझे देखिए मजे से खेल

0: भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं, लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात

रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है।

0: रुई। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपके पन्ने चार रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? उल्टी बात या नहीं? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
1: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: कहानी। और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की, बहुत सारे संदेश हमारे सखियों ने भी भेजे हैं
1: जी बहुत सारे आए हैं।
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले गीत सुन लें।
1: चलिए

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं अपनी
1: बहुत
0: सखी।
1: सारे संदेश। और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्योहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है। और साथ में ये भी लिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एक साथ की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास का हम स्वागत करें इसी भावना के साथ। बहुत सारे संदेश
0: हाँ,
1: आए
0: और
1: हुए हैं।
0: हमारे एक श्रोता भाई ने या सखी है, इन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे एक संदेश में हमारे श्रोता बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
1: और इसी की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आए उनकी मूर्ति, और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
1: क्या बात है।
0: और ये अजमेर के श्रोता भाई जो हमारे श्रोता हैं, और इन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
1: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है
0: और
1: ना।
0: लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई
1: जी
0: ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: कितने अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला। और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख देखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती है चंचल।
0: बिल्कुल
1: कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है, और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना। बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा।
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं। और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है।
1: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
0: और हिंदी का रिश्ता पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा है। जैसे अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा लालित्य था
1: बिल्कुल।
0: कविता का। और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है। बरसों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना, तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं,
1: बिल्कुल, ये बात तो
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: मिट्टी से जुड़े
1: सही,
0: हुए लगते हैं ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा

0: टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है। तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बजे जो, जो बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, उन्होंने लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में। और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
0: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी चीज है।
1: बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसे
0: जी
1: भी जरूरत हो गई
0: जी
1: है। लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है
0: जी
1: हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने, निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय की सूल। और आगे उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे संदेश हैं। लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
1: चलिए

0: सारे
1: आमंत्रित कलाकार हैं
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
1: सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात कर लें। खाने पीने की बात हुई, मोदक की बात अलग हुई, लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए। और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में ना कमल ककड़ी बहुत होती है।
0: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
2: हाँ,
0: लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं
2: मतलब इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
0: और खासतौर पर चंचल जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं
2: जी।
0: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन लौंग 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फटना है ना, तो फटे ना इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
2: और
0: है,
2: जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार अब इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
2: हाँ।
0: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की मिट्टी जो
2: उसके छेद में अंदर मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
0: चिकनी होती है, तो वो सब बाहर निकल
2: आसानी से निकल जाएगी।
0: अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाएं, पका लीजिए, या तब तक की जब तक की कमल ककड़ी थोड़ी
2: नरम ना हो जाए
0: जी। जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फैटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फैट लेना ताकि कोई गांठें उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है तो कुकर का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें और लगातार चलाते हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में या कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में ही डालना है, लगातार चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे ना। और जब ग्रेवी में उबाल आ जाए और ऊपर घी या तेल ऊपर तैरने लगे तब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दीजिए। आपकी नदरू यखनी तैयार है।
2: एक और कश्मीरी व्यंजन हमारे पास आई है विधि इसकी। इसमें बताया गया है कि कमल ककड़ी एक
0: इंग्लिश में लोटस स्टेम भी बोलते
2: हैं। हाँ, और वहां की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर। इसको पकाने के लिए 2 से 3 कप कटी हुई ताजी दही, 1 कप सरसों, लगभग उसी तरह की ये विधि इन्होंने बताई है। और इन्होंने बताया है कि मध्यम आकार के टुकड़े काटकर उबाल लें और फिर 10 मिनट तक पानी में उबाल लें, जैसा कि पिछली रेसिपी में भी था, लेकिन इसमें ये बताया गया कि ये खासतौर पर

0: घी या सरसों के तेल में से पकाया जाता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि इसमें पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही
1: दही ना
0: ना फट
1: फटे
0: जाए, तो
1: जी।
0: अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं, इसका
1: जी।
0: कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन
1: और
0: की बात है।
1: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
0: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बातें, रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो एक गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद आया कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही ये गीत था।
1: बिल्कुल
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के, यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए। और बहुत सारी बातें करते, गीत सुनते, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा,
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: और चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओ नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं।
1: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
2: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
1: जी।
2: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज में, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
2: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो
1: जी जी,
2: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी बिल्कुल,
2: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है
1: जी।
2: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे, डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है, और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम करिए बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है
1: जी, बिल्कुल।
2: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहां पे वो

0: ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया, या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए, या फिर अनार हो गए। ये थोड़ी सी चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
1: जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में। कुछ लोगों को देखा है पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बोतल या 2-3 गिलास पानी। तो
0: जी,
1: ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
0: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता,
1: जी, सही
0: उसको
1: तरीका।
0: सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा,
1: जी,
0: ना
1: बैठकर।
0: बॉटल से। आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में, इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो, थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए,
1: सिप
0: जो कि
1: सिप करके
0: आपके लिए
1: पानी।
0: बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में, कि आप वो 1-2 सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए।
1: जी
0: कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको 1 ग्लास 1 घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे
1: जी
0: धीरे, ये जरूरी है।
1: जी
0: गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है।
1: जी
0: आप
1: बिल्कुल
0: बैठकर पियो, खड़े रह के पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
1: जी, बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है। डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं, तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतना भी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी ले आ सकते हैं 3 से 4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे अगर खाना नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है। मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ। कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिस कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं, डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक
0: जी
1: उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए। और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है,
0: बिल्कुल।
1: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं, अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आप

0: करके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीज को भरेगा। तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं
1: जी,
0: है,
1: बिल्कुल।
0: या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होता।
1: अच्छा,
0: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी, कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर,
0: जी,
1: कौन सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है, मन ठीक रहता है,
0: हाँ जी,
1: मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते
0: एब्सोल्युटली।
1: हैं ये गाना।

0: और से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है, ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी
1: आपकी
0: तुरंत।
1: भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप
0: जरूरी
1: उसी को निकाल दो।
0: जी जी
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का।
0: बिल्कुल।
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं, मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं,
0: जी।
1: तब आपकी खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो। ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है?
1: इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हो और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है, तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
0: जी
1: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है।
0: जी
1: और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
0: जी। खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
1: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ, कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है, बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
0: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए या
1: ऐसा
0: टाइम?
1: जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज वही थाली आप

को अच्छे से शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके दो खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे एक रोटी या दो रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप

0: खाना जरूरी है। तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे, आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा
1: जी, अभी 2 टाइम का भी चल रहा
0: बहुत
1: है फैशन
0: ज्यादा।
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खाना है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी।
0: हाँ,
1: तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं,
1: जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए। जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाड आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाड हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं,
1: बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं, और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है। तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा
1: जी
0: खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी, एक गाना सुने,
0: जी
1: कौन सा?
0: क्यों ना, ये जीवन है पिया का घर,
1: इस जीवन का यही
0: इस
1: है रंग
0: जीवन
1: रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या आईबीएस आईबीडी जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए,
0: जी जी
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता है। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है, या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इश्यू हो और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं।
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी
1: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर 3 4 बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका
0: जी
1: भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोर्सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान है, वो भी तो
0: जी
1: इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनोआ हो

0: या कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला
1: किनवा
0: जाता है। किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं। नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट।
1: जी जी
0: तो ये
1: जी
0: सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो
1: ये
0: ये
1: तो
0: थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने,
0: जी,
1: कौन सा
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।
0: एक

0: तो जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं।
1: जी
0: धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं,
1: हाँ,
0: बल्कि ये कोदो और जो नाम
1: बहुत
0: आपने
1: ज्यादा।
0: बताया।
1: और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहां हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है,
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते
0: सिर्फ
1: हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद
0: चावल।
1: चावल,
0: बिल्कुल, और खुशबू।
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का
0: ब्राउन
1: इस्तेमाल
0: राइस
1: करें।
0: भी एक आता है।
1: ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है, अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, उसका
0: अच्छा,
1: सब कुछ निकाला हुआ होता है।

0: बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
1: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
0: आज भी वही
1: धान को
0: इस्तेमाल।
1: उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं,
0: हाँ
1: वो बहुत
0: हमारे यहाँ
1: मोटा होता
0: उकड़ा
1: है।
0: तांदूल बोलते हैं
1: हाँ
0: महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं,
1: जी जी जी
0: जिसमें अच्छा ब्रान भी होता है, विटामिन भी होते
1: हाँ
0: हैं, वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
1: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खास तौर से, अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
0: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहां पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए,
1: ओ
0: छोटे चम्मच,
1: हो
0: 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं।
1: जी
0: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया। हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबियत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर 1 महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है।
1: जी
0: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो हाँ ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल
0: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे। विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
1: जी जी
0: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है
1: बिल्कुल
0: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ
1: होनी
0: होने ही
1: होनी है
0: वाली है।
1: बिल्कुल।
0: आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इश्यू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबियत के लिए भी अच्छा होता है, और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: वो इस्तेमाल आप कर सकते हो।
1: जी बिल्कुल। घानी का तेल, यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताजा
0: जी
1: तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक हैं।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4ों चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे
1: नहीं
0: के रूप
1: जी,
0: में, पूड़ी और पराठे के रूप
1: बहुत ज्यादा।
0: में। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया, और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए।

0: तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है छोटा बम बड़ा धमाका है, छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
0: जी
1: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोले मैं तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया, मगर क्या ये हर कर सकता है? नहीं, किसी को तकलीफ दे सकता है।
0: जी
1: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो। खीर
0: खीर घर में बना के।
1: भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहां पे बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में है, दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मीठा खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना, कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, इसी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको
0: जी
1: हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं वो फटक से बोलेंगे आपकी एक चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी है वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो
0: बिल्कुल,
1: हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान दे।
0: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें,
1: हाँ,
0: तो वो भी ठीक नहीं है,
1: ठीक नहीं है।
0: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके शरीर
1: हाँ,
0: में जा रहा
1: और
0: है जो
1: कुछ लोग
0: हानिकारक
1: ऐसे
0: है।
1: बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है, या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
0: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने
1: जी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्ते।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

रंग में कि टंग में हो रूप तेरा डंग मारदा। ओ

0: छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
1: जीवन दे हर सवाल दा जवाब श्रीमद भागवत गीता दे अनमोल ज्ञान विच।

जी श्रोतियो, हर मंगलवार प्रोग्राम हर अकाल उस्ताद दे तहत तुसी अजकल सरवन कर रहे हो श्रीमद भागवत गीता। अते इस मंगलवार मिति 15 सितंबर शाम 5:30 बजे तुसी सरवन करोगे श्रीमद भागवत गीता दे 5वें अध्याय दी सरल अते सौखी व्याख्या।

जानो कर्म त्याग अते आत्मिक शांति दा डूंगा संदेश बिल्कुल सौखी पंजाबी विच। वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

नमस्कार दोस्तों, मैं हां निशांत कुमार, आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हां आज दे प्रोग्राम युवानी विच। ते दोस्तों आज दे प्रोग्राम विच गलबात करांगे आज दे विशेष दिना बारे, ते नाल ही गलबात करांगे आज दे विशेष मेहमान नाल। ते दोस्तों जिवें कि तुहानू पता ही है, अज है गणेश चतुर्थी। भारत त्योहारां ते परंपरावां दी धरती है। साडे हर त्योहार नाल कोई ना कोई सुंदर संदेश, सिक्ख्या अते सभ्याचारक महत्ता जुड़ी हुई है। अज असीं गलबात करांगे पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी दी। हर साल भादो महीने दे दी चतुर्थी नूं गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ते दोस्तों इस साल 14 सितंबर नूं एह दिवस मनाया जा रहा है। भगवान गणेश जी नूं भारतीय परंपरा विच बुद्धि, ज्ञान, शुभता ते सफलता दा प्रतीक मन्या जांदा है। विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। किसी भी शुभ काम दी शुरुआत तो पहला गणेश जी दा सिमरन करन दी परंपरा है। इस दे पिछे भावना एह है कि साडे हर काम दी शुरुआत चंगी सोच, सियानप ते सकारात्मकता नाल होवे। ते दोस्तों गणेश जी दा स्वरूप भी सानू कई जीवन सिक्ख्यावां दिंदी है। उन्हां दे वड्डे कान सानू ध्यान नाल सुनन दी प्रेरणा दिंदे हन। वड्डे सिर ज्ञान ते विशाल सोच दा प्रतीक मन्या जांदा है, जदकि छोटियां अखां एकाग्रता ते ध्यान दा संदेश दिंदियां हन। ते दोस्तों गणेश चतुर्थी मौके लोक अपने घरां ते जनतक थावां ते गणेश जी दियां मूर्तियां स्थापित करदे हन। श्रद्धालु पूजा अर्चना करदे हन।

0: दोस्तों गीत तो बात तोड़ा फिर तो स्वागत है प्रोग्राम युववाणी विच। ते दोस्तों आज गणेश चतुर्थी दे नाल नाल ना आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 नू भारत दी संविधान सभा दे देवनागरी लिपि विच हिंदी नू संघ दी सरकारी भाषा वजो स्वीकार किया। इस इतिहासिक फैसले दी याद विच हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस दा मकसद हिंदी भाषा दी वरतों विकास दे सहित नाल लोकां नू जोड़ना है। इस दिन वख-वख सरकारी ते सिक्ख्या संस्था ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਿਓ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੁਵਾਨੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਰਜੋਰਾ ਜੀ ਨੇ।
1: प्रोफेसर डॉक्टर समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के प्रसारण में।
2: नमस्कार भाई, सबको नमस्कार।
1: आपको आज के दिन यानी के हिंदी दिवस 14 सितंबर की बहुत बहुत बधाई हो।
2: आप सबको भी, समस्त श्रोतागणों को भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: प्रोफेसर साहब, हम हिंदी के उपलक्ष में खास तौर पर आज का ये जो दिन मना रहे हैं हिंदी दिवस, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, इस दिन का महत्व क्या है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है हमारा?
2: मैं तो हिंदी दिवस पर बोलने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि कोई भी जो भाषा है, भाषा केवल मात्र संवाद का माध्यम नहीं होती
1: जी।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति, संस्कृति, संवेदना और उसकी जो अस्मिता है, उसकी पहचान होती है।
1: बहुत अच्छे।
2: हिंदी हमारे लिए केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की जो विविधता है उसको जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है
1: जी।
2: आज अगर हिंदी दिवस की बात करते हैं तो ये कड़ी का काम के रूप में ही 14 सितंबर को देखा जाता है
1: जी।
2: क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि के रूप में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था
1: जी।
2: और इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में ही हिंदी दिवस मनाया जाता है
1: जी।
2: और ये दिन आज हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है क्योंकि अपनी भाषा हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई थी, क्योंकि उससे पहले तो इंग्लिश ही एकमात्र भाषा थी जिसे राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली हुई थी
1: जी।
2: और हमारी स्वतंत्रता के बाद हमारे लिए ये 1949 यानी 14 सितंबर 1949 का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण दिन था मैं कहूंगा, और आज है।
1: प्रोफेसर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि संविधान में मान्यता प्राप्त बाकी भाषाओं से हिंदी भाषा किस तरह अलग है?
2: देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं तो ये समझता हूँ कि सारी भाषाएं समान है
1: जी।
2: और सरकार भी ये निश्चित कर चुकी है और कि भारत की समस्त भारतीय भाषाएं, सारी भाषाएं ही राष्ट्रभाषाएं हैं
1: जी
2: हमारी
1: जी।
2: और अगर हम अलग करने की बात करते हैं तो अलग थोड़ा सा अलग इस संदर्भ में है क्योंकि ये एक पुल का काम करती है, एक सेतु है
1: जी
2: समस्त भारत, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत ही विश्व की एकमात्र एक ऐसा देश है जो विविध भाषी है
1: जी।
2: और इस विविध भाषी राष्ट्र को अगर कोई एकता के सूत्र में पिरोता है तो वह हिंदी भाषा है
1: जी।
2: क्योंकि इसको बोलने वाले, इसको समझने वाले और इसको जानने वाले
1: जी
2: इस भारत वर्ष में सबसे ज्यादा है
1: जी।
2: और हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हम कन्नड़ में की बात करें, चाहे मलयालम की बात करें, चाहे किसी भी भाषा की बात करें
1: जी,
2: और वहां पर जाकर अगर हम किसी से संपर्क करते हैं तो वहां हमारी भाषा जो होती है वो हिंदी है
1: जी।
2: इस तरह से ये एक संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क भाषा की शक्ति के रूप में हमें समस्त हमारे भारत को

0: जोड़ती है,
1: जी
0: इसलिए ये दूसरी भाषाओं से थोड़ा सा हटकर है।
1: जी प्रोफेसर साहब, आपने द्राविड़ियन भाषाओं की बात की, जिसमें आपने कन्नड़ और तमिल की बात की है। हमारे देश में ये बहुत बार देखने को मिला है, हम इससे मुख नहीं मोड़ सकते कि जो हमारे दक्षिण भारत में जो हमारे बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों में बहुत से लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने हिंदी भाषा का समय समय पर विरोध भी किया है। उस संदर्भ में हम आज की स्थिति जानना चाहते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है?
0: देखिए, दक्षिण भारत में आज भी हिंदी पढ़ी भी जाती है
1: जी
0: और पढ़ाई भी जाती है, लेकिन आप एक चीज से भली भांति परिचित हैं कि भारत क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है
1: जी
0: और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो चलाता है वो जनता चलाती है,
1: बिल्कुल
0: और जनता पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से अपने रिप्रेजेंट चुनकर भेजती है। और भारत की विडंबना है कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं
1: जी
0: वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए भाषाई जो एक रूपता है
1: जी
0: उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। ना तमिल से कोई झगड़ा है, ना द्रविड़ से किसी का झगड़ा है।
1: जी
0: झगड़ा तो सिर्फ और सिर्फ इन राजनीतिक पार्टियों का अपनी साख कहने तो अपनी सत्ता को बचाए रखने का झगड़ा है,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: जिसमें वह इस चीज का प्रयोग करते हैं भाषा का, और
1: जी
0: इस आधार पर वो समस्त भारत को अलग करने का एक संदर्भ लेकर चलते हैं,
1: जी
0: क्योंकि भाषा जोड़ती है, मैंने पहले भी कहा, और
1: बिल्कुल
0: हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो समस्त भारत को एकता के सूत्र में पिरो रही है इस समय।
1: जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही।
0: तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये कोई झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल है, क्योंकि भारत की भाषाओं में एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि सारी भाषाओं का अपना, भारतीय भाषाओं का अपना एक अस्तित्व है, सारी भाषाएं ही मातृभाषाएं हैं, सारी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं।
1: जी
0: अब ये झगड़ा ही खत्म हो गया कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छे। ये वाकई ही अपने आप में एक प्राप्ति है। प्रोफेसर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आज के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, जब हम एआई को हम इस तरह से अपना चुके हैं कि वो हमारा एक स्थायी अंग बन चुका है हमारे जीवन का, तो उस दौर में या उस संदर्भ में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, या टेक्नोलॉजी के कारण हिंदी के प्रस्थान में, प्रोत्साहन में, इसके फैलाव में क्या वृद्धि हुई है?
0: देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है
1: जी
0: वैसे वैसे हिंदी भी तकनीक के साथ जुड़कर आगे बढ़ रही है।
1: जी
0: आज हिंदी विज्ञान और तकनीक की भाषा बन सकती है और बन रही है।
1: जी
0: कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसमें हिंदी अपने ढंग से अपना प्रसार ना कर सकी हो, कर
1: जी
0: रही हो।
1: जी
0: अगर हम हिंदी में उच्च शिक्षा की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करवा दें,
1: जी
0: ठीक है, जैसे अभी NEP 2020 में ये किया गया है कि जो हमारी जितनी भी भारत की अपनी भारतीय भाषाएं हैं
1: जी
0: उन सब भाषाओं का, जो चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो वाणिज्य है, चाहे कोई भी है, उन सब में जो भारतीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध होगी। अब इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार में अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है,
1: जी
0: इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में हो रही है,
1: जी
0: ठीक है, अब वो प्रश्न पीछे छूट गया है। हाँ, ये जरूर है कि अभी हिंदी में, मतलब इस डिजिटल युग में, हिंदी को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ेगा, अपने
1: जी
0: आप को खुला रखना पड़ेगा।
1: जी बहुत
0: वैसे भी
1: अच्छा
0: हिंदी बहता नीर है जो
1: जी
0: अपने अंदर सब कुछ समेट कर चलती है,
1: जी
0: तो इसलिए एआई के साथ जुड़कर अगर हम देखें तो इसका विस्तार हो रहा है।
1: जी
0: आज सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, चाहे वो वर्तनी हिंदी है, चाहे वो शब्द इंग्लिश के लेकिन लिखे हिंदी में जा रहे हैं, तो
1: जी
0: किसी ना किसी रूप में हिंदी का ये प्रसार है,
1: वाकई
0: हम उसको सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं।
1: जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। टेक्नोलॉजी, डिजिटल युग और एआई के साथ साथ हम हिंदी भाषा को दरपेश और जो बहुत सारी चुनौतियां हैं उनकी बात करना चाहते हैं।
0: सबसे पहली बात अगर हम बढ़े तो चुनौतियों में पहली चुनौती अगर देखें हिंदी के सामने, तो सबसे बड़ी चुनौती हिंदी के अस्तित्व की नहीं है आज,
1: जी
0: हिंदी की गुणवत्ता की, उसकी उपयोगिता की, और आधुनिक संदर्भ में उसको स्वीकार्य करने की चुनौती है।
1: जी
0: ये मैं
1: बिल्कुल
0: समझता हूं
1: जी
0: कि उसकी

0: गुणवत्ता कैसे बनाई जाए, उसको उपयोगी कैसे बनाया जाए, ठीक है, वो हिंदी नहीं है। अब प्रयोजन मूलक हिंदी का कंसेप्ट आया है
1: जी
0: कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंदी का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि आज हम लोग मानते हैं कि हमारे जो अस्तित्व में, हमारे मस्तिष्क में एक चीज घर कर चुकी है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हमारे रोजगार से जुड़ना चाहिए।
1: जी
0: तो हिंदी में जो प्रयोजन मूलकता का संदर्भ आया है वो इसी संदर्भ में आया है कि उसकी उपयोगिता भी तो होनी चाहिए अगर हम कुछ
1: जी
0: चीज पढ़ते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो आज इसके सामने चुनौती इस चीज की है कि हम इसकी गुणवत्ता, इसकी उपयोगिता और आज के संदर्भ में उसकी स्वीकार्यता को बनाए रखें।
1: क्या बात है, बिल्कुल आपने बहुत
0: और इसी के साथ एक बात और है कि हमें हिंदी में थोड़ा थोड़ा करके हिंदी को उस भाषा तक लाना पड़ेगा। देखो, दो तरह की भाषा है, एक तो हमारी साहित्यिक भाषा है,
1: जी
0: ठीक है, और एक हमारी बोलचाल की भाषा है,
1: बिल्कुल
0: और एक तीसरी भाषा ऐसी है जिसके साथ जैसे जैसे हम हिंदी को जोड़ रहे हैं वैसे वैसे हिंदी बढ़ती जा रही है, और
1: जी
0: वह रोजगार की भाषा। और जब कोई भी भाषा जब जब रोजगार की भाषा बनती है, आज अंग्रेजी का बोलचाल अगर हम करें, बोलबाला है, तो किसके कारण है? क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उसको रोजगार के साथ जोड़ दिया गया।
1: जी
0: और जब हम हिंदी को रोजगार के साथ जोड़ रहे हैं तो हिंदी की अस्तित्व, हिंदी की अस्मिता अपने आप बढ़ती जा रही है।
1: जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छे कहा सर। हम ये जानना चाहते हैं अब कि हिंदी को दूसरी भाषाओं से थोड़ा मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि इसमें उदाहरण के तौर पर आधे अक्षर का उपयोग भी होता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं?
0: देखिए, मैं ये समझता हूं कि कोई भी भाषा मुश्किल नहीं है
1: जी
0: और हर भाषा मुश्किल है। जिस भाषा को हम उस भाषा के रूप में जानते हैं,
1: जी
0: उस भाषा के रूप में पढ़ते हैं, तो वह हमारे लिए सामान्य है।
1: जी
0: लेकिन जब हम किसी भाषा को दूसरी भाषा के साथ तुलना करके जानने की कोशिश करते हैं, तब हमारे लिए वो भाषा मुश्किल होना शुरू हो जाती है।
1: जी
0: देखिए, हमारा घर भी है, जब अपना घर हमारे लिए अच्छा है क्योंकि उसकी हर चार दीवारी हमें पता है, लेकिन जैसे ही अपने घर की तुलना हम दूसरे के घर से करना शुरू कर देते हैं कि उनकी दीवारें पतली हैं, हमारी मोटी हैं, या हमारी मोटी हैं, उनकी पतली हैं,
1: जी
0: तब हमें अपना घर अच्छा लगना,
1: कम हो
0: मतलब
1: जाता
0: थोड़ा कम हो जाता है।
1: जी
0: उसी तरह हिंदी में जब आपने एक अर्ध अक्षर की बात की है ना, ये विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जिसे अर्ध अक्षरात्मक भाषा कहते हैं।
1: जी
0: उस ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कारण क्या है कि इस भाषा में कोई भी विश्व का ऐसा शब्द नहीं है जो इस भाषा के माध्यम से ना लिखा जा सकता हो,
1: जी
0: और ये अर्ध अक्षरात्मक के कारण ही है।
1: जी
0: अर्ध अक्षर इसकी विशेषता है, इसको टफ नहीं बनाता, सिर्फ जानने की ही इच्छा है कि
1: जी
0: हम लोग उस अर्ध अक्षर को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं।
1: बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब, हमारी इस बातचीत के आखिर में हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने के लिए या इसे और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए किन की ज्यादा जिम्मेवारी है? आम लोग जो इस वक्त हमारे श्रोतागण भी सुन रहे हैं, वो इसमें अपना किस तरह सहयोग दे सकते हैं, हम जानना चाहते हैं।
0: देखिए, मैं समझता हूं कि अगर हिंदी को लोकप्रिय बनाना है तो वो चार स्तरों पर उसकी जिम्मेवारी है।
1: जी
0: पहली बात तो परिवार की है,
1: जी
0: बच्चों से संवाद उनकी भाषा में करिए, हिंदी में करिए।
1: जी
0: दूसरा, जिम्मेवारी विद्यालयों की है,
1: जी
0: हिंदी केवल मात्र एक विषय में के रूप में ना पढ़ाकर हिंदी को एक भाषा के रूप में व्यवहार में लाने की कोशिश करें विद्यालय।
1: जी
0: तीसरी कोशिश या तीसरा स्तर मैं जिसे मानूंगा वो विश्वविद्यालयों के स्तर पर है
1: जी
0: कि जिसमें हिंदी में उच्च स्तर का शोध हो, ऐसी सामग्री, ज्ञान की सामग्री विकसित की जाए जो सामान्य वर्ग के साथ जुड़े,
1: जी
0: क्योंकि जो भाषा सामान्य वर्ग से जुड़ेगी वही भाषा विकसित होगी।
1: जी
0: और तीसरी जिम्मेवारी समाज और मीडिया की है, और जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है
1: जी
0: कि हिंदी को आधुनिक, सरल और प्रभावी रूप में कैसे समाज के सामने समाज प्रस्तुत करता है और कैसे समाज के सामने मीडिया प्रस्तुत करती है।
1: जी
0: एक उदाहरण है आपके लिए, कई बार जैसे आपने हिंदी में शब्दों की बात की है, कोई टफ होते हैं,
1: जी
0: आपको याद होगा कि कौन बनेगा करोड़पति आता है,
1: जी
0: उसमें एक शब्द है जो अमिताभ बच्चन कम से कम अपने एक उस टेन्योर में, एक सीरीज में कम से कम 20 बार बोलते हैं,
1: जी
0: और वो है कंप्यूटर जी।
1: जी
0: अगर उस शब्द की जगह उन्होंने संगणक बोला होता ना,

0: वंश है,
1: जी
0: तो आज हर व्यक्ति को पता होता कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं।
1: जी
0: बात चीजों को व्यवहार में लाने की है,
1: जी
0: और ये रोल सबसे बड़ा कोई अदा कर सकता है तो मैं समझता हूं वो मीडिया है।
1: जी प्रणव, तब
0: इसलिए
1: आपने बहुत अच्छी उदाहरण के साथ हमें ये समझाया, जैसे उसी सीरियल में या उसी प्रोग्राम में देवियों, और हमें पता चला कि लेडीज एंड जेंटलमैन
0: जेंटलमैन
1: देवियों और सज्जनों है,
0: सज्जनों,
1: तो उसी तरह हमें बहुत कुछ और भी पता चलता रहेगा अगर हम इसे व्यवहार में ले आएंगे। प्रोग्राम
0: व्यवहार
1: के और हमारी इस बातचीत के आखिर में आपका संदेश?
0: मैं बस इतना कहूंगा कि हिंदी का जो प्रश्न है केवल हिंदी का प्रश्न नहीं है।
1: जी
0: आज अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो ये केवल हिंदी की बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग भी यही बात की थी कि भाषा केवल मात्र भाषा नहीं होती,
1: जी
0: भाषा समाज, संस्कृति, संवेदना और अस्मिता की पहचान होती है।
1: जी
0: इसलिए हिंदी का प्रश्न केवल हिंदी का प्रश्न नहीं है, ये भारत की भाषाई विविधता का, भाषाई संस्कृति का, भारत के ज्ञान की आत्मनिर्भरता का प्रश्न है।
1: जी
0: हमें हिंदी को किसी दूसरी भाषा के विरोध में खड़ा नहीं करना।
1: जी
0: पहली बात तो ये हम सबको माननी चाहिए। हम बार बार कहते हैं हिंदी के विरोध में, मतलब या इंग्लिश के विरोध में हिंदी, कोई विरोध नहीं है भाषाई हमारे सामने।
1: जी
0: इंग्लिश अपनी जगह है, हिंदी अपनी जगह है।
1: वाकई
0: हमें हिंदी को इतना सक्षम बनाना है कि वह विज्ञान की बात कर सके, तकनीक की बात कर सके, रोजगार की बात कर सके,
1: जी
0: शोध की बात कर सके, और साथ ही हम लोगों के मन की बात भी उसे सहजता से हम कह सके।
1: जी
0: ऐसी हिंदी अगर हम बना लेते हैं तो मैं समझता हूं कि हिंदी हमारे अतीत की स्मृति है, वर्तमान की अभिव्यक्ति है और हमारे भविष्य की संभावना है। और
1: प्रणव,
0: आज हिंदी दिवस के पर केवल हिंदी बोलने का ही हमें संकल्प नहीं लेना है, हिंदी में सोचने, हिंदी में पढ़ने, हिंदी में लिखने, हिंदी में ज्ञान रचने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी संकल्प लेना है। इस रूप में हमें हिंदी को स्वीकार करना होगा तो हिंदी अपने आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने ध्येय की ओर बढ़ेगी।
1: प्रोफेसर डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भाई साहब, सबको एक बार पुनः हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
2: ते दोस्तों, यही सी प्रोग्राम युववाणी, मेनू यानी कि निशांत कुमार नू देओ इजाजत। जय हिंद।

जी श्रोतियो, हर मंगलवार प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे तहत तुसी अजकल सर्वन कर रहे हो श्रीमद भागवत गीता। अते इस मंगलवार मिती 15 सितंबर शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोगे श्रीमद भागवत गीता दे 5वें अध्याय दी सरल अते सौखी व्याख्या।

जानो कर्म त्याग अते आत्मिक शांति दा डूंगा संदेश बिल्कुल सौखी पंजाबी विच। वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। तां फिर सुनना ना भुलना, मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। अमरीका दे एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नूं बहुत सफल दसदिआं कहा कि नवीं दिल्ली ऐलाननामा वक्खो वक्खरे विचारां वाले देशां विचकार सहमति बनाउण दी भारत दी योगता नूं दर्शाउंदा है। सरकार ने कहा कि फौज के अणथक यत्नां सदका जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह काबू हेठ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अज नवी दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री नाल 19वीं भारत वियतनाम संयुक्त कमिशन की मीटिंग की सह प्रधानगी की। सरकार ने नेपाल बिजली अथार्टी नूं इस साल 31 दिसंबर तक 18 घंटे रोजाना बिजली बरामद करने की इजाजत दे दी है। ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज पंजाब विच 27 अक्टूबर तो 5 नवंबर तक होने वाली हाकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का लोगो जारी किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। अमरीका के एक विश्लेषक ने नवी दिल्ली में हुए 18वें ब्रिक्स सम्मेलन बहुत सफल दसिया है। उन्होंने कहा कि नवी दिल्ली ऐलाननामा वक्खो वक्खरे विचारां वाले देशों विचकार सहमति बनाउण दी भारत की योगता नूं दर्शाउंदा है। अटलांटिक कौंसल विखे दक्षणी एशिया लई सीनियर फैलो माइकल कोगलमैन ने कहा कि यह ऐलाननामा भारत दीआं वधदीआं विश्वव्यापी तालमेल समर्थावां अते ब्रिक्स की वधदी मानता नूं दर्शाउंदा है। भारत की प्रधानगी हेठ दो रोजा ब्रिक्स सम्मेलन कल नवी दिल्ली में खत्म होया। इस 11 प्रमुख उभरियां अर्थव्यवस्थावां ने हिस्सा लिया जो दुनिया की लगभग अद्धी आबादी ते विश्व जीडीपी का लगभग 40% की नुमाइंदगी करदियां ने। ब्रिक्स नेतावां ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, समाजिक ते आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा ते सारे देशों की भलाई लई एक महत्वपूर्ण बुनियाद है। नवी दिल्ली में हुए दो रोजा ब्रिक्स सम्मेलन दौरान मैंबर देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता यकीनी बना के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। सरकार ने कहा कि फौज के अणथक यत्नां सदका जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह काबू हेठ है। रक्षा मंत्रालय ने 2025-26 लई अपनी ताज़ा सलाना रिपोर्ट जारी करदिआं इन्हां यत्नां दे नतीजे वजों हिंसा विच काफ़ी कमी आई है, विरोध प्रदर्शनां विच भी कमी आई है अते पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं वापरी। इस रिपोर्ट विच चीन नाल समुची स्थिति ते भी रोशनी पाई गई है। साल 2025 विच उत्तरी सरहदां ते चीनी फौज की तैनाती विच काफ़ी कमी आई है। भारत ते चीन विचकार राजनीतिक, कूटनीतिक ते फौजी पद्धर ते दवली गलबात नाल उत्तरी सरहदां ते सकारात्मक विकास होया जिस नाल स्थिरता आई है। रिपोर्ट अनुसार असल कंट्रोल रेखा दे नाल सारे खेतरां विच भारतीय फौजी तैनाती मजबूत, चंगी तरह संगठित ते किसी भी हंगामी हालत नाल निपटण लई तैयार है। रिपोर्ट विच इह वी कहा गया कि रक्षा मंत्रालय विदेशी दरामदां ते निर्भरता घटाउण लई भारतीय उद्योगक आधार नूं सरगर्मी नाल

0: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी सूचना मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे तुसी सुनोगे सिलसिला छावा ठंडिया ने बोर्ड दिया जिस विच मेहमान होंगे उगे चित्रकार श्री केवल कृष्ण मेजबान रहेंगे संदीप शेरगिल प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा ता फिर सुनना ना भूलना मिति 15 सितंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम छावा ठंडिया ने बोर्ड दिया
1: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते इस वेले चल रहा है प्रोग्राम शाम सुहानी।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम शाम सुहानी। प्रोग्राम दा संचालन कर रहे सन संदीप शेरगिल। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्स अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी दे अनुसार रात दे 8 बज रहे हन। हुण तुसी सुनोगे एक स्पोंसर प्रोग्राम उमंग। इस नूं स्पोंसर कीता है NCERT ने। अज तुसी इस दा 1371 भाग सुनोगे।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़।

0: छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गज भी है और राधिका गज भी है। रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो, कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित। ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे, गुब्बारे,
2: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल

0: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
2: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
3: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
4: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात।

0: किया।
1: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
0: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
1: उनकी माँ का नाम रेनल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही संभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
0: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
1: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
0: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
1: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
2: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। बधाई हो।
3: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत बधाई।
3: धन्यवाद।
0: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
4: बहुत बहुत बधाई हो।
0: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
1: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
5: आइए मारिया जी।
6: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ
5: जी?
6: कुछ उदास लग रहे हो।
5: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
6: और बुरी?
5: जी।
6: अब भला वो कैसे?
5: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
6: हाँ हाँ जरूर।
5: जी
1: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता।

0: था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
1: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क के गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
2: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह सामान्य नहीं है।
0: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
3: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
0: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
3: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
0: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
4: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
0: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
4: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था।

0: हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
3: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
3: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
2: जी,
3: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
2: जी जी, धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
0: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
1: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
0: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
1: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
0: ६ मई ১৯৫২ को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
1: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
5: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अरशद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित

0: दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
5: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
6: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर

0: लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपके लिए लीजिए इस कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया और आरडी बर्मन का संगीत बद्ध किया गीत। इस गीत को लिखा है निदा फाजली ने, फिल्म का नाम है हरचाई।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

प्रेम कहानी। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है किशोरदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे
2: सरदार? दो आदमी थे।
1: दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
3: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर?
2: हाँ?
1: कितनी गोली है?
2: छह सरदार,
1: छह, छह गोली, छह गोली है इसके अंदर, छह गोली और आदमी थी। बहुत बेइंसाफी है ये। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमाए दिए। अब कहां गोली है कहां नहीं, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला।

ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फन

0: तेरा क्या होगा कालिया? अरे
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया। हाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पसोपेश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर, जिनका नाम है GP सिपी।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

0: अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे ला ला ला ला ला ला
1: जी पी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जी पी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई, 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शूली, और शूली के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई।

सन 1992 में आई राजू बन गए जेंटलमैन, यहां से शाहरुख खान की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपी सिप्पी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपी सिप्पी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपी सिप्पी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

0: इसके बाद आई आतिश, सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।
1: तेरी बातों की शराब, तेरे पापों के हिसाब, तेरे स्विस बैंक अकाउंट, गोल गोल मॉल चाउ, तेरे गली गली यार, पूरी गोली बार बार, पहले यारी में मिली फिर देखी बार बार, तेरी होगी सरकार, तेरा होगा दरबार, पर रहेगी नहीं कमजोरी हर बार, जाएंगे जाएंगे जाएंगे बारी बारी,
2: आपकी सेवा में जनहित में जा रही है।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
3: आज के फनकार।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मुझे तुमसे बेहतर की ख्वाहिश ना थी ना रहेगी। तुम्हारी जरूरत थी, जरूरत है और रहेगी। दुनिया लाख हसीन चेहरे दिखाए, दिल ने तुम्हें चुना, तो फिर किसी और की ख्वाहिश कहाँ रहेगी। एक ही शख्स में सब कुछ पा लिया, इश्क भी मोहब्बत भी, प्यार दोस्ती रूह का सुकून दिल का करार भी। तू मेरा अपना भी है और मेरी दुनिया भी, मैंने खुद को तुझ में पा लिया। अब अगर कोई पूछे कहाँ है मोहब्बत, जवाब होगा सिर्फ तुम।
1: कौन है जो

मुझे शौक नहीं था मोहब्बत का, तुझे एक नजर क्या देखा, दिल बगावत कर बैठा। फिर ना अक्ल ने साथ दिया, ना दिल ने कोई दलील मानी। बस एक तुम और तुम्हारी याद, जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। ये मोहब्बत मेरे दिल की किस्मत बन गई। तुझे गले से लगाकर बताऊं, कितनी रातें तेरी याद में जागकर गुजर गईं। तुझसे दूरी में कितनी बेचैनी, तन्हाई में कितने लम्हे तेरा नाम लेते हुए ठहर गए। काश तू एक बार करीब आ बैठे, मैं लफ्जों के बगैर अपनी कैफियत सुना दूं कि तुम दूर होते हो तो जिंदगी सूनी बेनूर सी लगती है मुझे।

हम खामोश रहे और तुम बात समझते गए। हम नजरें चुराते रहे और तुम हाल पढ़ते गए। हम हाले दिल छुपाते रहे और तुम करीब आते गए। फिर बेपनाह इश्क हुआ और तुम दिल के मालिक बन गए। तेरे होने से जिंदगी में कोई सवाल नहीं, तेरा हाथ थामा तो सफर में कोई मलाल नहीं। तुझे पाकर अब किसी खुशी का इंतजार नहीं, राहे मोहब्बत में तू मिला तो दिल पे अब कोई अख्तियार।

पत्थर मुझे कहता है, मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं। उसने मुझे छूकर नहीं देखा। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पलकों के किनारे जो हमने कभी भिगोए नहीं, उन्हें ये लगता है कि हम कभी रोए नहीं। पूछते हैं किसे देखती हो ख्वाबों में, उन्हें क्या खबर के हम बरसों से सोए नहीं। दिल में छुपा है जो जुबां से कहें कैसे, मोहब्बत है तुमसे अब ये बताएं कैसे। जज्बाए इश्क सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है, सांसों का सफर तुमसे तुम तक है। हाँ मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है, दिल जिसे भूल नहीं सकता वो धड़कन हो तुम। तुमसे है मेरी दुनिया हसीन, मेरी पहली मोहब्बत।

तुमसे मिलने की ख्वाहिश भी अजीब ख्वाहिश है। दिल ने हर ख्वाब में तुमको पुकारा है। तुम आओ करीब तो वक्त ठहरने लगता है। तुमसे बिछड़ना दिल को कहाँ गवारा है। ना तुमसे दूर रहने की ख्वाहिश, ना भूलने का हुनर। तुमसे जुड़ी मेरी हर बात अब किसी बात की तमन्ना नहीं दिल में। तुम मिले तो मुकम्मल हुई मेरी तन्हाई। तुम मिले तो मुझे खुद से भी हुई मोहब्बत। तुम्हारा जिक्र हुआ तो महक गई तन्हाई, जैसे खामोश फिजा में उतर गई रानाई। तेरी आवाज में कुछ पाया ऐसा सुकून, जैसे धड़कते हुए दिल को मिले अपनी गहराई। तुम्हें सोचा तो लगा वक्त भी ठहरने, दिल ने इश्क की एक नई दुनिया बसाई।

0: दिल से उतर कर दिल में ही रहा करते हैं, कुछ ताल्लुक भी अजीब हुआ करते हैं। लोग चेहरों से मोहब्बत का सबक पढ़ते हैं, अपने दर्द को दिल में ही छुपाए रखते हैं। किसी ने पूछा मुस्कुरा के हाल हमारा, दिलों में तूफान लब पे खामोशी रखते हैं। वफा के नाम पे ये जो जख्म मिल गए हमको, उन्हें दिल में तुम्हारी अमानत बनाए रखते हैं।
1: छेड़ा।

मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। विविध भारती से छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी।